0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्याम।

कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026, दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: como lo hago yo, como lo hago yo.
1: हिमेश रेशमिया और कृष्णा की आवाज में अभी आपने सुना आशिक बनाया आपने फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

0: เฮ้ย
1: महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम की आवाज में अभी आपने सुना बंटी और बबली फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

चांदनी चौक टू चाइना फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा रजत अरोड़ा ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

0: शंकर महादेवन की आवाज़ में अभी आपने सुना दिल चाहता है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जावेद अली और कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: Kele kute ndoresan, nache kute chumesan. Kele kute ndoresan, nache kute chumesan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
3: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
3: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
3: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ।

0: साथ विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहनें, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तबे चलते, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38

0: डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है,
1: जी।
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: तो डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
6: नमस्कार
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
6: लांस

0: फैक्ट सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
0: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
0: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी

0: पाकिस्तानी सेना ने यहां अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसने उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा

0: سلام.
1: परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
0: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंदो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
1: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को लेकर ये निर्णय किया। 3 मई को हुई इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका है। एनटीए की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर ये साफ हो गया है कि इस परीक्षा प्रक्रिया को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। एनटीए जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी नीट परीक्षा से जुड़े कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा से पहले एक गैस पेपर अभ्यर्थियों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। एनटीए की ओर से जल्दी ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करती है और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करती है। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सेवाभावी नर्सिंग कर्मियों का सम्मान समारोह रखा गया है। भाजपा नेता हेमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सरमा लगातार दूसरी

0: बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंचेंगे, बाद में स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 14 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। वे पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम रातानाड़ा सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का इससे पहले मेड़ता के संस्थापक राव दूदा राठौड़ की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत कल कोटा में कार्यशाला का आयोजन हुआ। सियाम सभागार में हुई इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने कहा कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं, कुओं, बावड़ियों और पानी के स्रोतों को बचाना होगा। इस मौके पर उन्होंने जल ग्रहण विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी खनन में लगे 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 42 वाहन भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में मौसम के कल 2 अलग अलग रूप देखने को मिले। एक और पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा, वहीं दूसरी ओर उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर चला। बाड़मेर में दिन का पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके साथ ही बाड़मेर लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान बना रहा। जोधपुर, बीकानेर और फलौदी में भी झुलसाने वाली गर्मी रही। उधर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में आंधी और गरज के साथ बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

0: बढ़िया कार्यक्रम सुनने वाले सगले सखियों ने सगले श्रोताओं ने और ये कार्यक्रम ने चाव नारे सगले श्रोताओं ने रेडियो सखी गुंजन और साथ ही टीना बहन थोने घना घना राम राम।
1: राम राम गुंजन बहन, बहुत बहुत राम राम।
0: टीना बहन अपो हर कार्यक्रम में सबसे पहले तो बात कर लो है कि है वे दिन विशेष री,
1: जी
0: तो ये कड़ी में दिन विशेष री जब बात करो तो आज भी एक दिन विशेष तो है ही जी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: भारत में विदेशों में तो वह नहीं हुए लेकिन भारत में तो हर दिन एक उत्सव है, हर दिन एक त्योहार है।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बात है।
0: अगर भारतीय उत्सव और त्योहार जगह दिन नहीं मनी जाए अड़ो वह को नहीं,
1: सही।
0: तो भारतीय उत्सव त्योहार तो अपने आप में हमेशा मनता ही रहे, लेकिन आज एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है
1: जी
0: जी आप
1: जी
0: बात
1: जी
0: कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो आज है ओड़ो दिवस जगह माथे लोग कम सोचिया करे, तो टीना बेन फ्लोरेंस नाइटेंगल रो नाम कदे सुनिया उसे, क्योंकि
1: जी
0: बच्चों की किताबों में भी यीशु संबंधित पाठ और अध्याय आया है, तो
1: बिल्कुल
0: मैं भी
1: बिल्कुल।
0: मारे बच्चों ने पढ़ाया जाना, मैं भी वो ना

0: पढ़ियो तो हालांकि खुद पढ़ियो जो को याद को नहीं आपने समय रहा
1: सही
0: लेकिन बच्चा ना पढ़ा है जो को बात
1: उम्र रो फर्क पड़ जाए
0: उम्र रो फर्क पड़ जावे कुछ आप और सोचन नहीं समझन नहीं क्षमता वो टाइम उड़ी वे को नहीं शायद जानो आपको को नहीं सुन समझ आया या याद को नहीं वो चीज
1: बिल्कुल
0: फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक एडी लुगाई थी जिको की दुनिया री पहली एडी नर्स मनी जावे जिके की मानव सेवा रो कार्य बड़ी कुशलता से कियो
1: बिल्कुल सही बात है
0: और सबसे ज्यादा मनो जिको याद कियो जावे वो क्रिमिन वॉर चुको है तो पूरे दौरान वे घायल सैनिकों की जो सेवा करी थी
1: जी
0: क्योंकि टीनामेंट जब कोई व्यक्ति घायल हो जावे नहीं तो वो ना सबसे ज्यादा प्रेम पूर्वक उपचार ही आवश्यकता
1: है बिल्कुल बिल्कुल
0: उपचार तो कोई भी दे सके लेकिन प्रेम पूर्वक जो को उपचार दिया करे जिके सुखी मोरा घाव तेजी से ठीक हुआ
1: बिल्कुल सही बात है
0: तो वे जरूरत नो पूरो कियो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल
1: बिल्कुल
0: वो टाइम क्रिमिन जो को वार हो तो घायल सैनिकों की सेवा करने वास्ते वो रात रात दीपक लेके जाती थी और उमरी सेवा करती थी
1: बिल्कुल
0: अच्छा नर्सिंग रो काम हो सिर्फ घायल या चोट या वो रो उपचार करना
1: जी
0: लेकिन असल में जद कह रहे लग जाया करे खुली चमड़ी हो जाया करे मतलब जो आप समझाएंगे जी की जगह घाव हो गयो गहरो घाव हो गयो तो वो ना इन्फेक्शन से कोकर बचाओ
1: सही
0: कोई संक्रमण नहीं हो जगह मत है ताकि और कोई रोग नहीं बदले
1: बिल्कुल
0: तो वो जगह ना संक्रमण रहित रखने वास्ते भी वो पूरा प्रयास किया वो स्वच्छता रो पूरा ध्यान रखियो और नर्सिंग कर्मियों ने की करना चाहिए उपचार के दौरान कई तरीके से आपरी हाइजीन बनाए रखनी चाहिए और संक्रमण मुक्त खुद ना रखे ताकि वो जो को मरीज है वो ना संक्रमण मुक्त रख सके
1: जी
0: और वे सुवरो उपचार ठीक है ना कि बढ़े
1: सही बात
0: तो
1: है
0: सबसे पहले नर्सिंग रो काम होए खुद ना संक्रमण मुक्त रखना ताकि थे जिकनो भी हाथ लगाओ जिकरो भी उपचार करो वे ना कोई तरीके से संक्रमण नहीं
1: जी
0: तो ये बात और इस शुरुआत सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल करी थी और उनकी सेवा भावना और अस्पतालों में सुधार जो वो करवाया वे कारण है दुनिया भर में नर्सों रे महत्व न समझो जाओ
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बहुत ऊंचो होया करे लेकिन डॉक्टर जो को दाइनो हाथ होया करे वो नर्स होया करे
1: बिल्कुल
0: जो करे बिना डॉक्टर भी की को नहीं कर सका
1: सही
0: तो वे महत्व न जो को समझियो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कार्य और बाद में समझो गए दुनिया में कि एक तो जरूरी है
1: बिल्कुल
0: ठीक ही कह रहा था टीना बहन थोड़ी बात
1: इलाज करियो और इलाज रहे सुधार रहे वास्ते वो हॉस्पिटल और जिको स्थितियां होती उवे में भी सुधार लावन रहे वास्ते काफी प्रयास करिया था बिल्कुल और नर्स जिको है वो मरीज रे घाव ना तो भरन रो काम करे पर सबसे पहली बात की है कि अगर नर्स मीठो बोले ने तो आप देखो है कि मरीज जिको है वो मेरी मिठास सु याद हो क्योंकि जब आप टाबर ना हॉस्पिटल ले जावे तो देखो टाबर पहले डरे कि ना हो सुई को नहीं लगो पर जब नर्सिंग स्टाफ रो कोई व्यक्ति आवे और प्रेम सु बोले वे सु बात करते करते उन्हें लगा भी नहीं तो उन्हें ठाई
0: कौन बोले ठाई कौन बोले सही
1: बिल्कुल तो ये
0: बहुत जरूरी चीज है कि थे कौकर बहलाए के मन ना लगाए के और उर बाद में आप रो काम करो
1: बिल्कुल
0: तो ए काम है बहुत अच्छे से नर्सिंग जो को डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से ये काम ना करिया
1: करी बिल्कुल
0: और दुनिया भर में जरूरत समझी गई कि नर्सों का महत्व की है और एक कई रूप में आप नो सहयोगी साबित हो रहा है और कौकर समाज वास्ते एक प्रेरणा रो स्रोत बन सके
1: बिल्कुल
0: ये कारण ये महत्व ना समझो गयो और अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाओ ली बात उठी
1: बिल्कुल
0: और हमें जब बात उठी तो ये सोचू गयो कि कई दिवस नो कई दिवस तो नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जावे
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे समय में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से बेहतर विकल्प कहनो भी कौन दिखियो क्योंकि वो दुनिया की पहली एडी नर्स थी जिके वाकई में सम्मान और सेवा भाव से सब जिको भी हुए कने मरीज आया उनकी उपचार कियो उनकी देखभाल की और साथ में जिके स्वच्छता से और जिके तरीके से कार्य करना चाहिए महत्व ना समझियो तो सब रे जहन में एक ही बात आई कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब जन्मदिन आवे जिके दिन नो मनाया जावना चाहिए नर्सिंग दिवस रूप में तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्म 12 मई ने जोयो तो ये कारण 12 मई 1945 65 ना सबसे पहले।

0: अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी।
0: मेरे बाद में 1974 में घोषणा हुई कि 12 मई रे दिन नहीं जे, मतलब नर्सिंग दिवस मनाने तो शुरुआत हुई थी, लेकिन 1974 में अंतरराष्ट्रीय रूप से आधिकारिक रूप से 12 मई रे दिवस ए घोषित कर दियो गयो कि ए नर्सिंग दिवस रे रूप में मनाए जा से। तो ए नर्सों रे मेहनत नो और उनकी सेवा ना सम्मान देने वास्ते लोगों ना बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं रे प्रति जागरूक करने वास्ते
1: जी
0: नर्सिंग रो पेशो भी अड़े के जो थोड़ा एक रोजगार रो साधन हो सके और साथ ही थोड़ा सम्मान ने जिंदगी भी दे सके
1: जी जी।
0: तो ये चीज नो भी बढ़ावा मिलियो और साथ ही मानव सेवा री जो भावना है वो भी जन जन तक फैली।
1: बिल्कुल,
0: ये कुछ कारणों के कारण नर्सिंग दिवस मनाने की घोषणा हुई और आज तक नर्सिंग दिवस बराबर प्रति वर्ष मनाया जावे। ये मैं मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल तो वही जे डॉक्टरों की सहायता करण में भी नर्सों की आगे रहे वो भी अपना ध्यान है। आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में भी नर्सिंग स्टाफ जो रहा करे वो एक बार सो पेशेंट री मरीज री पूरी स्थिति ना संभाल लेवे।
1: बिल्कुल, और आप जब देखिए जदना ऊपर है कोरोना काल है।
0: हाँ, कोरोना का महामारी री टाइम तो एडी विकट परिस्थिति जिके मैं नर्सिंग स्टाफ री मेहनत नो सच में सलाम करना चाहिए कि वो बिना डर बिना झिझक रहे सब मरीजों ने एक समान मनियो और कोई भी रूप में हाथ लारे को नहीं करिया और बराबर सेवा भावना सो। और एडा भी कुछ नर्सिंग स्टाफ रहा जो कि ये दौरान आपकी जिंदगी भी खोई, लेकिन फिर भी कदम वाला लारे को नहीं हटिया ये महामारी में भी और वो बराबर सारे मरीज और बहुत बेहतर चिकित्सा सेवाओं उपलब्ध कराई, ध्यान रखियो गयो और बेहतर सुरक्षा मानक दिया और संक्रमण मुक्त रखने भी पूरा प्रयास किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो नर्सिंग दिवस मनाने वास्ते तो अपन ध्यान के बात करी आपोगे सारा कारण है। हमें कोकर मनाया जावे तो वही जाएगी अस्पतालों में विभिन्न तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जावे, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जावे, बेहतर सेवाओं देवने वास्ते कुछ नर्सिंग कर्मियों ना सम्मानित किया जावे ताकि दूसरों में भी प्रेरणा स्रोत बनोड़ रहे और वो भी ये कार्य रे प्रति आगे बढ़े और मानव सेवा और मानव धर्म रे नाते ये कार्य ना और अच्छे तरीके से करे।
1: बिल्कुल,
0: और स्कूलों में कॉलेज में कई जगह में प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी बच्चों ने जागरूक किया जावे ये विषय की तरफ आकर्षित करने हिसाब से भी मनाए जावे और जन जागरूकता अभियान चलाए जावे विभिन्न तरह का सरकारी कार्यक्रम हुए ताकि लोगों ने ये दिवस की जानकारी मिले और वो भी ये
1: जुड़े
0: संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े और खुद रो पेशेवर रूप में भी अगर कोई जुड़ना चाहो तो वो भी
1: जुड़े।
0: तो यह कोई एक उत्सव को नहीं बल्कि नर्सों रे त्याग समर्पण और सेवा री भावना ने वास्ते उन्होंने सम्मान देने वास्ते ये दिन मनाया जावे और ये दिन आप उम्र प्रति समर्पित कर दो ताकि नर्सों अपना स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा बेहतर उपलब्ध करावती रहे और एक मजबूत नींव रे रूप में हमेशा खड़ी रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी थो गुंजन मैन। आप और जो कुछ रोता है वो भी सुन के ये सो जरूर कुछ ना कुछ सीख से। बिल्कुल,
0: और प्रेरणा ले से।
1: बिल्कुल, तो मैं बहुत बड़ी बैनर करवा सा मनोरंजन।
0: बिल्कुल टीना मैन, बात चर्चा हो गए और बीच में ढोलक नहीं बजे एड़ो तो वही कौन सके।
1: बिल्कुल,
0: तो ले सो छोटो सो विराम और सुना सो एक बढ़िया मीठो फूटो गीत
1: जी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: टीना बहन हना घर सो जब ये आ रही थी तो सड़कों एकदम सूनी देखी जी।
8: बिल्कुल,
7: और बहुत कम भीड़ भाड़ जो को अपने शहर में सर्दियों री टाइम देखी जी। तो पावनो रिवेन भी जो ऊपर आप रही, क्योंकि सर्दियों में तो व्यापार पूरे जोर चले, तो सब लोग सड़कों में तक क्योंकि ना गर्मी ज्यादा है और हमारो इलाको तो गर्म गर्मी रे वास्ते पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
8: सही
7: है। तो ये वास्ते ये गर्मी में तो सच में बाहर निकलना एक अभिशाप ही जाए। और खुदरी सुरक्षा तो आईज गई कि तेज गर्मी जो है 1 बजे से ले 4:30-5 बजे तक रो टाइम है, ये समय में तो बिल्कुल घर से बाहर निकलना इस दिन। और अगर निकलो तो पूरा शरीर न ढक के निकलो ताकि सूरज री जो तेज गर्मी है वो सो आप शरीर झुलसे नहीं और ये गर्मी रे प्रकोप सुबह आवो
8: बच जी।
7: पर हम बात कर रही थी कि सड़क ना जब देखी एकदम सुनी तो ध्यान में आयो कि ये सड़क वहां थे जब भीड़ अनुती रहे तो दुर्घटना बहुत मिनटों में मिनट तो की वे सेकंड में दुर्घटना घट जावे कि कीट सुकून निकल के आ जावे और अचानक कोई पशु भी आ जाए तो पूरी वजह से भी
8: दुर्घटना
7: हो सके
8: जी।
7: तो मैं चलते चलते आपरे व्हीकल आपरे वाहन ने थोड़ो सो तेज करियो, तेज करते मेरे दिमाग में आई कि सड़क तो हालांकि खाली है पर क्या तो तेज चलना सुरक्षित है
8: जी।
7: तुरंत मेरी रफ्तार कम होगी तो मन में बात आई कि सखियों से भी ये बारे में एक अच्छा विषय है जिसके बारे में आप चर्चा कर लेनी चाहिए।
8: बिल्कुल,
7: सड़क मधे चलते समय अपन खुद री सुरक्षा तो चाहिए, साथ ही दूसरों री भी सुरक्षा अपने हाथ में है
8: जी।
7: क्योंकि मैं अगर तेज रफ्तार वाहन दौड़ायो भले सड़क खाली है लेकिन केज सुबह कुछ भी अचानक हो सके
8: जी।
7: तो अगर गति आप संयम में नहीं है तो अपन उस ऊंचो चलना भी नहीं चाहिए
8: जी।

0: भले आप वो पैदल चलो चाहे व्हीकल में चलो वाहन में जाओ, लेकिन एक जितने कंट्रोल में जितने संतुलन में आप चल सको उससे ज्यादा आप नहीं जाना
1: जी
0: चाहिए। चूंकि सड़क सुरक्षा एक ऐड़ो नियम है, एक ऐड़ी बात है जिसके बारे में सुनो तो आप 12 महीना हो लेकिन तसल्ली सो और मतलब दिमाग सो आपको सोचो को नहीं बारे में।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: जब भी आपको घर से बाहर निकले जब मन में एक सवाल आवे कि आपको पैदल जाओ या स्कूटी में थे या स्कूटर में थे कार में गाड़ी में जो को भी आपको अपने व्हीकल है साधन है वाहन है जिके मत भी आपको सफर करेगा क्या आपको सुरक्षित रूप से घरे पहुंच जा सो। यद्यपि लेख जो को है वो तो लिखोड़ा है वो नहीं
1: जी
0: कोई टाल गुन सके पर
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी सी सुरक्षा अगर आपको अपनाए लो नहीं तो वरी वजह से आपको जो को होने वाली दुर्घटना में वो सो खुद ना बचा सके और साथ ही जो को आप पर है जरा दूसरा लोग भी सड़क में चल रहा है या वाहन चला रहा है उम्र भी सुरक्षा ना आयाम दे सके।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो सड़क सुरक्षा बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप पर जीवन ना सुरक्षित करे। हर दिन आपको बढ़ाएंगे सड़क सड़क सुरक्षा में सड़क दुर्घटनाओं में अनेकों लोग मारे आ जावे
1: जी
0: थोड़ी सी चूक की वजह से और एक छोटी सी चूक कति गंभीर समस्या पर वास्ते लाए सके ये चीज ना वो सड़क दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ने बाद में समझ में आवे। तो हमेशा सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम है मोरा पालन करना चाहिए जिके सो की दुर्घटनाओं ना काफी हद तक रोकी जा सके।
1: बिल्कुल।
0: जीवन ने आप और रक्षा करे दुर्घटनाओं में कमी लावे अनुशासन बनाए रखे और समय और धन भी बचत हुए
1: जी
0: क्योंकि ट्रैफिक नियम और ज्यादा पर नियम पालन कराने नियम सु तो सड़क हादसों में कमी आवे
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और जब सड़क सुरक्षा राज को नियम अपन सिखाया गया है मोर भी पालन करें तो भी दुर्घटनाओं से आप खुद ना बचावे और दुर्घटनाओं से बीजारी भी रक्षा करें और रुए सु भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी आवे।
1: जी
0: वाहन चलाते समय जब नियमों और पालन हुए तो एक अनुशासन बना रहे और जब
1: बिल्कुल
0: अनुशासित जीवन चले ही नहीं तो भी दुर्घटनाओं में कमी आवे।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही समय और धन भी बचत हुई क्योंकि अनर्गल रूप से अगर आप नियमों और पालन नहीं कर सो तो केत न केत भुगतान भी भुगत सो
1: बिल्कुल सही
0: चालान भी
1: बात।
0: फट से कदे या कदे आप पर खिलाफ मानहानि रो केस भी हो से कदे आप पर खिलाफ मानहानि रो तो को नहीं कह सको मतलब गलत तरीके से वाहन चलावन रो
1: जी
0: और जो को कहो जावे कि एक तो वाहन चलाते समय जरूरी नियम है कि एक तो आप और चलाते समय कोई तरीके रो नशो नहीं हो
1: जी
0: हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए सीट बेल्ट अच्छे से लगोड़ो होना चाहिए
1: हेलमेट
0: हेलमेट
1: पहरोड़ो
0: पहरोड़ो सीट बेल्ट या हेलमेट पहरोड़ो में
1: जी।
0: तो ऐ जो को बचाव उपाय है अगर आप ये पालन करो नहीं तो आप खुद ना कई ऐसी दुर्घटनाओं से गंभीर समस्याओं से बचा सके। और टीना मैंने ये हादसे की शिकार हुई हो चुकी है लेकिन हूँ बच गई क्योंकि मैंने हेलमेट पहनो तो
1: अच्छा
0: वो दिन मैंने हेलमेट की असली अहमियत समझ में आई जब खुद रे साथ बीती जब
1: सही बात।
0: प्रवचन बहुत बार सुनिए लेकिन कभी अमल कौन करी तो लेकिन जिके दिन मैं एक्सीडेंट हो हालांकि एक्सीडेंट कोई बहुत साधारण है तो मेरी गलती भी कोनी थी लेकिन केरी गलती हो सके ये भी कोनी ध्यान आप कह को नहीं सको कि मेरी गलती है या नहीं है
1: जी
0: क्योंकि आगे चलाओ नाले गाड़ी अचानक रोक के गेट खोल दी होती जी सु गेट खोलन से हूं मेरे लारे आती थी तो एक तो यह भी बात समझ में आए कि जब भी कह रहे लारे आप चल रहे हो तो वे सो एक निश्चित दूरी बनाए के चलाओ
1: बिल्कुल।
0: और वेरा जो दरवाजा है अगर चार पहियों और व्हीकल चल रहे आगे तो वेरा जो दरवाजा है वो सो भी कुछ दूरी बनाए के चलना चाहिए
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कद
1: बिल्कुल
0: अचानक
1: खुल
0: वो दरवाजा खुल जावे
1: जाए
0: और
1: बिल्कुल।
0: आपको ना दुर्घटना का शिकार कर ले तो ऐडी दुर्घटना हुई वेरी वजह सो गेट खुलने कारण हूँ गिरी लेकिन मेरे हेलमेट पर तो वेरी वजह से मेरे मथे में कित भी चोट को नहीं आई और हूँ एकदम सुरक्षित रही। अगर वे जगह मथे मारो केत भी दीवार से सर लग तो हेलमेट नहीं पहरोड़ होता तो कुछ भी हो सकता था।
1: बिल्कुल
0: और देखो समय तो पूछ के आवे गुणी के कद भी छोटी सी गलती आप और अपने भुगतान रे रूप में
1: बिल्कुल
0: स्वामी आवे गए आप अति सी गलती नहीं करता तो अपना यह भुगतना नहीं पड़ता।
1: सही।
0: तो ऐसा सड़क सुरक्षा का जो नियम है यहाँ हमेशा पालन करते रहना चाहिए।
1: एक बात और गुंजन बहन, देखो हर एक व्यक्ति जब गाड़ी में थे या टू व्हीलर या फोर व्हीलर में, तो वे ना आप गंतव्य मतलब उगन

0: इतनी जल्दी हमेशा रहे।
1: हाँ ये बात है।
0: ए जिको जल्दबाजी है ने, और आजकल जिको थो बात कही कि आज थो आम थे जब सड़क खाली देखी तो थोनो भी लगी हो कि थो आपने वाहन की गति बढ़ाए दो। पर अपो जब सड़क में थे चलो ही तो मैं काफी बार देखी है कि आज की जिको युवा पीढ़ी है जिको गाड़ी नई नई चलावनी सीखे वो वाला जिको बच्चा है छोरा ज्यादातर वो बाइक बहुत ही तेजी से चलावे। कई बार तो एडो हुई गुंजन में हड़ो ही जो रिसेंटली क्या अपो अगर सड़क रे किनारे खड़ा भी हो वो इतना तेजी से जावे कि थोरो वाहन खड़ो है लेकिन वो थोनो तो भी टक्कर मार के जैसे और हवा सु भी तेज गति सो। ए जिको जल्दबाजी है नी, ए जल्दबाजी कई बार जिको है हादसा रो कारण बने,
1: कई बार को नहीं अक्सर हादसा रो कारण वही बने जल्दबाजी।
0: बिल्कुल
1: जल्दबाजी में आपको कोई काम करा है तो या तो वो काम बिगड़ से और या बड़ो काम भी खराब हो जाए।
0: बिल्कुल तो म्याली तो अपरी जिको बहनों सुन रही है वो सोच गुजारिश रह से कि अपर अजत घर सु बच्चा निकले तो अपने 10 बार खड़ा हूँ कि भैया गाड़ी धीरे चलाया और अगर छोरी भी निकले तो वे ना भी कहो भाई गाड़ी धीरे धीरे चलाए।
1: उरे बाद में टीना मैंने एक और भी देखी कि अगर कहना कह रहे विभाग ना आपको शिकायत करो ना कि ये वाहन चलाना सही को नहीं आया बहुत तेज गति से चलावे आए यो कट मारे यो करे तो उन्होंने जो अभिभावक है वो साख बढ़ता हुआ की कैसे की करो मोने को मोने को कर को नहीं मना ये बात समझ में ना आवे
0: क्या तकलीफ भी तो कितनी
1: देखो कते कते थे कोए के नहीं बच्चों कते ये जिद करे के नाली रे पानी पीस और थाओ कते वो पीन दियो
0: सही
1: है तो जद ओ विच का मते आप ने रोक सको है कोई भी चीज ना खावन पीन ने अगर कोई गंदी चीज खा सको आप ने कौन खावन दनी तो ये जगह आप क्यों कौन रोक सको।
0: बिल्कुल
1: मोने को नहीं रे तो बात है ही कोनी थोड़ो सो नियंत्रण जो है वो अपर पुरजो रोना चाहिए तो अपने आप सब काबू में रह जावे और वो ना सीख भी देनी चाहिए समय समय माथे के देखो थे जावे व्हीकल में थे थोड़े साथ में भी अगर कोई है तो देखो पूरी जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है और जीवन जो को मिलियो है ये प्रकृति री देन है
0: जी
1: और ये जीवन ना बड़ो सहेज कर रखना है आपो ना हथे कर आपो संकट मोल लो
0: मोल नहीं लो
1: ये री वजह से आपो दूसरों ना परिवार वाला ना सब ना दुखी करो उस बेहतर है कि आप संयमित रूप से जीवन जियो ताकि घर वालों परिवार वालों बाहर वालों कहने भी आप वजह से असुरक्षा नहीं महसूस।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो सुरक्षित माहौल में रहना हर नागरिक का कर्तव्य है और अधिकार भी है तो दूसरों ने भी उत्तर तो सुरक्षित जीवन प्रदान करना यह भी आप अधिकार है और कर्तव्य है
0: जी।
1: तो आप संयम बढ़त के अनुशासित रूप से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हमेशा चलना है ताकि आपो कहना भी तकलीफ नहीं दे सको और आपो की वजह से कोई कहना भी नुकसान नहीं हुए और खुद नो भी नहीं हुए खुद क्योंकि अगर आप खुद नो भी नुकसान पहुंचे तो आपो की वजह से आपो परिवार वाला दुखी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो निश्चित रूप से आपो अगर कुछ भी अनदेखी करें नियमोरी तुम्हें नियमोरी अनदेखी की वजह से आपो दूसरों ना और आपरे परिवार वाला ना दुखी कर सो तो एडो काम नहीं करो और बड़ी सावधानी से ये नियमों का पालन करो और आराम से ये राह मत है चलो। तो टीनावन बड़े एक बढ़िया गीत सखियों के वास्ते सुनाई दिया जावे ताकि सखियों रहो तो रहे मनोरंजन और एक छोटो सो जावे विराम।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर।

0: ମୋତେ ଶୁଣାଇବ ଏପିଆର ସୁ ଲୋକଗୀତ ଜିକେନ ସୁର ସୁସଜାଏ ତୋ ପରେ ସୀମା ମିଶ୍ରା ଆମେ କ୍ୟାରି ଜାନକାରୀ ଦେଇ ରହେ ହୋ
1: टीना बहन, ये गर्मी रे मौसम में देखो इनके इतनी गर्मी पड़ रही है और बाहर जब पौधा ना देखो नहीं तो ये लगे कि आपको तो इतनी मिनट भर बाहर जाओ तो आपको ना सहन को नहीं आता। बेचारा पौधा नाजुक सा ये झुलसा होती गर्मी ने कोकर सहन करे।
0: बिल्कुल सही बात।
1: और पछे देखो कि हमारी मिट्टी जब तक गीली रहे जब तक वो हरा भरा रहे, जब जो है मिट्टी सूखनी चालू जाए तो पौधा बेचारा मुरझाना
0: चालू हो जाए। सही है,
1: पौधों ने भी पूरे देखभाल की जरूरत रहे और मौसम रहे अनुसार अगर आपको पूरी ध्यान रखो ये पौधों रो तो पौधा भी बड़ा खूबसूरत मतलब आपो ना जीवन देवे और एक जीवन रो प्रेरणा स्रोत भी देवे।
0: बिल्कुल,
1: कि खुद तप के भी कोकर खड़ा है वो।
0: आपो ना छाया देवे खुद तप के भी सबसे बढ़िया।
1: और जिकी जगह पौधा लगड़ा भी नहीं तो सुखी है कि जो आओ नाले हवा है नहीं उस वो भी जाने ठंडी ठंडी
0: लोर को ठंडो आवे
1: और वो रे आसपास रो जको इलाको वे इलाको मतलब कि आप जो गैलरी में लगाया है तो वो जगह ठंडी रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
1: तो ये मौसम में गर्मी में हालांकि पौधा कम पनपे लेकिन फिर भी पौधा आप घर में छोटी सी फुलवारी एक लगा सकें, गार्डनिंग कर सकें या जो घरेलू सब्जियों खुद भी आपको लगाए कि आप और घर में उपयोग ले सका।
0: बिल्कुल,
1: मसलन जो धोना पुदीना पालक है सब चीजों तो वही जो सर्दी में लगे पर गर्मी में तुलसी तो एक अपरो सदा बार पौधो है ही जो 12 महीना लग सके और 12 महीना आपको मेरी देख रेख कर सका।
0: बिल्कुल,
1: औषधि तो है ही जाए एक बहुत ही बढ़िया और साथ ही पवित्रता रो संदेश भी घर में दे तुलसी रे पौधो।
0: बिल्कुल सही,
1: तो तुलसी रे पौधे ना लगा सका है वे साथ ही आपो जो ग्वार पठो आप कही जे जो दुनिया पूरी में चमड़ी रे वास्ते बड़ो मशहूर है जो आप तो बड़ी आसानी से लग जाए।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो आप ज्यादा बढ़िया फलदार पेड़ पौधा तो को नहीं वे लेकिन जो भी वे वो लोगों वास्ते बहुत ही बढ़िया देन है और पूरी दुनिया ना वो सर्वसुलभ है कौन यार आप और तो मिल जावे।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ग्वार पठर वो जो है वो आप गमले में लगा दो तो ग्वार पठो भी बड़ी आसानी से लग जावे
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात ग्वार पठर ना ज्यादा पानी की जरूरत को।
0: बिल्कुल सही बात है, कम
1: पानी पानी तो चाहिए लेकिन कम पानी में भी मिल जावे
0: जी।
1: पर देखिये मैं अभी ध्यान दिए कि जब वो पानी कम मिले नी तो वे मोए जो जेल बने वो कम बने गिर कम बने।
0: बिल्कुल सही।
1: तो अच्छे से पानी दियो हुए तो गिर बड़े मजबूत और बढ़िया बने
0: मोटो मोटो
1: बालर वास्ते और चमड़ी वास्ते एक औषधि है बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक औषधि है जिसे ना आप सीधो अपनी चमड़ी में लगा सको है और मन तो लगे कि उन्हें सीधो काट के सीधा ही स्किन में बालों में लगा लो तो वो एक बढ़िया असर देखने मिले
0: जी।
1: और चमड़ी भी बहुत ही
0: धूप से भी बचावे।
1: बिल्कुल है, एक सन क्रीम रो काम करिया करे और धूप से जो जुलसोड़ी त्वचा वे नी वो ना एलोवेरा बॉडी तेजी से रिपेयर करे ठीक करे और तेजी से नई चमड़ी वो थावनी शुरू हो जावे।
0: और सबसे बढ़िया चीज तो की आप कई बार देखो थे कुछ मोटे बच्चों स्ट्रेच मार्क्स हो जावे ओ भी अगर तो हुए मतलब उन्हों नियमित हुए रो रगड़ कर सुने ताजे आलरो तो वे सो स्ट्रेच मार्क्स भी कम होना शुरू हो जावे।
1: मैं एक और चीज सुनी है जो करे घुटनों में दर्द हुए नहीं हो धूप में बैठ के वो एलोवेरा रे जेल नो 10 मिनट तक मालिश करे सरसों रो तेल और एलोवेरा नो मिला है के जेल नो
0: अच्छा।
1: और वो 10 मिनट तक मालिश करे तो एक ग्रीसिंग रो काम करे घुटने
0: तो बहुत ही बढ़िया चीज है।
1: प्रामाणिकता उनको नहीं कहोगे कितो हद तक है पर ये रो नुकसान तो कुछ भी नहीं अगर कह रहे तकलीफ है अगर करके देखी इलाज तो क्या पता हो सके वो सही हो जाए क्योंकि जिके में कोई नुकसान नहीं हो करण में कोई हर्ज भी कोनी जिके चीजों से नुकसान वे वो आप ना सोचना
0: पड़े ये कोई साइड इफेक्ट
1: ये कोई साइड इफेक्ट तो वह नहीं
0: जी जी।
1: उल्टा है अगर ज्यादा घुटना में तो गिस्सो तो घुटना चिकना हो तो चिकना होना कोई गुनाह तो है कोनी।
0: बिल्कुल।
1: तो ए एक पौधा है अपने जिका ना आप पन पा सके आप फुलवारी में आप गमलों में एक छोटे छोटे लाल गुलाब रो पौधो आवे ऑफिस टाइम जो कह रहा हूँ सुबह 10 बजे खिले और 5 बजे मुरझाए छावे
0: तो भी बेल है गिलोय है
1: गिलोय एक बहुत ही बढ़िया पौधो है जिसे आप घर में लगाओ तो ऐ की है कि फैले भी बहुत तेजी से है और फैले जाना घनघोर फैले
0: जी।
1: तो छाव रो भी कम करे छत नो भी ठंडक दे सके।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही एक औषधि तो है ही मैं और तो घर में टीना बहन नियमित रूप से गिलोय रो एक जूस बढ़िया करे और गरीज गिलोय नो काट के हालांकि मनो भाव को नहीं हो बात अलग है लेकिन गुणकारी और औषधीय गुण

0: आंसू भरपूर है
1: जी
0: और एक आ रहा अपने आप में एक परिपूर्ण जू सराज को गुण या करे नी जिके में सारा ही तत्व मौजूद है, वो सारा ही तत्व ये में मौजूद है। तो ऐड़ा पौधा आप घर में लगाऊ तो अपन की जानो अपन बड़े घर में ही जो अपन सारी औषधियों मिल सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: ये अलावा भी आप कुछ पौधा लगा सकें जो अपन शौक हुए रूप में नर्सरी से लाए के भी लगा सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन पौधा लगाना अलग बात है, लेकिन पौधों की सुरक्षा देनी, पौधों ना साफ सुथरा रखना और वो ना लंबे समय तक कायम रखना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होया करे
1: जी।
0: तो लोग की वे के थोड़ी सी लापरवाही वजह से कहवे कि मोरा पौधा जल जावे, तो जलन का कारण है कि एक तो आप पौधों की नियमित सफाई करो
1: जी,
0: तो वह गमला की नियमित सफाई करनी चाहिए और वह में खुली खुली मिट्टी लाए दे रखनी चाहिए ताकि वो मिट्टी पौधों में उपजाऊ बनो आवे और उपजाऊ बनो जब वे जब पौधों बढ़ियापन पे
1: जी।
0: और साथ ही वो में खाद जो को डालनी प्राकृतिक खाद आपको डालो जो बकरी जो को मिंगने आवे या गौ गाय और जो को गोबर ए नॉर्मल गाय जो आप घर में बाहर घूम रही है ना जो को हरो चारो रोई में चरे नहीं गाय वो अगर गोबर मिले और वो खाद दी जावे तो पौधों में देखो एकदम से निखार आ जावे।
1: निखार आ जावे बिल्कुल सही बात है।
0: और ये अलावा आप यहाँ पौधों ना बचाने वास्ते भी कर सको है आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप फल सब्जी और उपयोग करा गया है घरों में चाय भी बने गई तो ए चाय री पत्ती भी एक बहुत ही बढ़िया खाद रो काम करे।
1: बिल्कुल
0: पर की रहेगी चाय री पत्ती नो या नहीं अगर डाल दी जावे नहीं
1: तो नुकसान
0: तो वो नुकसान क्यों करे क्योंकि वो मीठी आवे वो मीठी हुई
1: जी।
0: तो चाय री पत्ती नो पहले धोई लियो जावे अच्छे से ताकि वो री मिठास निकल जावे
1: जी।
0: अच्छा वो चाय री पत्ती नो गमले में बिखेरे तो ए एक बढ़िया खाद रो काम करे।
1: बिल्कुल सही है।
0: जो अपने शरीर में मिनरल्स की जरूरत रहे कैल्शियम प्रोटीन विटामिन
1: सही बात
0: जो पौधों में भी यही जरूरत रहा करे तो वो ना आपको किए कि गमले में एक बार पौधों लगाने बाद में मिट्टी तो बदलो को नहीं ना कोई बहती नदी आवती जो कोई मिट्टी ना बहाए की एक लिया है तो पौधे में तो मिट्टी और ही हो रहनी है तो धीरे धीरे वो उपजाऊ पड़ो खत्म हो गई तो वो उपजाऊ पड़े ना बरकरार रखने वास्ते ये मैं ऐडी चीजों में लाऊनी चीजें और या बच्चे थे थोड़े घर में एक अलग ठो ले लो प्लास्टिक रो ले लो या मिट्टी रो घड़ो ले लो कुछ भी ले लो वह में जो भी घर ही जो सब्जी और वेस्ट आवे नी जो कचरो निकले जो छिलका हो या आलू रा छिलका कद्दू बनाए दियो तो उरा या थोड़ो टमाटर सड़ गयो या नींबू सड़ गया ये सारा ना पत्ते नो जो भी चीजा है वो मिलावता जाओ और मथे सूखे पत्ता री परत लगा दे और ये ना बढ़िया रहो तो एक बढ़िया कुछ दिनों में 15-45 दिनों में एक बढ़िया खाद
1: ले ले
0: तो ये ना थे पुरका हो अपने गमलों में तो गमला और पौधा थे देखिया जो निखर जासे मोर रूप रंगत दिखन में अपन उठा बढ़ी गए ये ना पूरा पोषण मिल रहे जो एक अष्टपुष्ट व्यक्ति ने देखे अपना लगे नहीं कि पूरा पोषण ये ना मिल जाए कोई बच्चों अगर अष्टपुष्ट दिखे तो अपना लगे कि ये ना तो पोषण एकदम सही है
1: सही।
0: और जब कोई कुपोषित बच्चा है देखो तो अपना लगे कि ये ना पोषण की कमी है तो वही चीज पौधों में भी कायम है और पौधों ने भी देख के अपना लगे कि ये ना पूरे पोषण की जरूरत है तो पोषण वो ना आप ये तरीके से दे सकें जो भी घर फूड वे छिलका वे वो ना पौधों में डाल देना चाहिए।
1: एक बात और बताओ एक देखो आप आजकल ठीक है ना नारियल आड़ो हुई ना
0: हाँ।
1: छिलका आप हुए ना नोक देता था पर हमें जब वो छिलको ना उतार जाए तो बुरा दो पर कितना सारो निकल जावे वो बुरा दे ना बाजार आड़ा मैं आजकल थे देखो वो नहीं तो बड्डू हो जावे की कहे ना कई खाद कहे पर आप तो घर ही बनाए सको पर नारियल तो दुनिया भर रहा है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: मेरा जिको बुरा दो है और बुरा दो नहीं भी हुए तो मेरा जिको छिलका हुई वो छिलका ना अगर चारे साइड पौधे में आप रख दीजिए और उरे में अगर आप पानी रो छिड़काव कर जे अगर आप दो दिन घर से बाहर भी जाओ रहने तो वो जिको छिलको है वो गीलो ही रहे क्योंकि मोटो बहुत हुए रो में बुरा दो अच्छो खासी मात्रा
0: में पानी ना पकड़ के रखे
1: बिल्कुल तो वे सब पौधा सूखे को नहीं यहाँ पर पौधों के वास्ते बहुत ही बढ़िया है खाद रो भी कम करे पानी की कमी ना भी पूरा करे तो ये वास्ते अच्छी चीज है। पर मैं आपको बहनों एक बार मनोरंजन करना चाहिए
0: बिल्कुल टीना मन करा देना चीजें थोड़ी डिमांड है मांग है और सखियारी भी मांग है कि बीच बीच में मनोरंजन होता रहना चाहिए तो आपको सुना सख सखियों ना बढ़िया मीठोगी
1: जी।

0: इसकर से आप रहस पास हरियाली लगावे और छोटा छोटा पौधा पनपावे और उनकी देखभाल करे
1: जी।
0: पर टीना बहन आज मैं आप और ये कार्यक्रम में तो लगाउन विराम लगाउन समय आई गयो। अगली बार आप सखियों ने मुखातिब हो सौ नई चर्चा और नई जानकारी के साथ आज रही कार्यक्रम में सखियों से लेसो सीख
1: कर सौ राम राम।

तो टीना बहन बढ़िया जानकारी दी तो सखियों नो अच्छी अच्छी बातों करी आप सखियों सु और हरियाली री बातों करी तो हरियाली तो कहना नहीं सुवावे तो सखियों नो भी जरूर सुवाई हसे और मन न भाई हसे और

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: NASDAQ plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heatwave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunderstorm with wind speed reaching up to 60 kilometers per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations. CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की

0: अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी
3: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं

0: में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक बढ़कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

जब नजर मिलाएगी शोक दिल रुबा, बिन पिए ही छाएगा हम पे एक नशा, हंस के गुल खिलाएगी उसकी हर अदा, हम कहेंगे जाने मन खुद पे हम फिदा, कि

0: तेरे हर सितम सहेंगे हम, आप जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी

अच्छी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो।

0: से कहीं जाने बाहर जाने चमन जाने बाहर जाने चमन है तवाशिकन।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल।

उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना, और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की, कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।
1: पिया, पिया, ना लागे मोरा जिया, आजा चोदी चोदी।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुनते हैं।

का कई बार मन दिल की उमंग को क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को जाने जाऊं तो ही मेरे प्यार।

0: ये अरोमा जरूर है। माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं ये अरोमा जरूर है। मानो न मानो दीवाना बेकसूर है।
1: कई बार मैंने दिल दिया क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को जाने जा।
2: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा का नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से ध्यान रखिए, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे,
1: तो ऐसा ना करें। सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती है, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं,
0: हाँ।
1: और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं, और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं। कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे, आजकल क्योंकि समय बदल रहा है हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चल ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करें।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलते हैं, और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
0: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी
1: हैं।
0: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे, और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
0: जी,
1: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
0: जी। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
1: इसके अलावा 2 खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी है, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: मोहर घर तुम्हारा नाम होगा।
1: चंचल जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
2: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है सच में
1: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना
2: और वो गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे संरक्षण करेंगे।
1: सही बात है।
2: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
2: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं जब वो बहुत छोटा होता है तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है वो बहुत नाजुक होता है
1: जी।
2: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना बढ़िया है ना पानी डाला सब पूछते हैं एक दूसरे से और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए जब सब तरफ से लगे हो या आपके बागीचे में लगे हो या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को पेड़ के।
2: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए कहीं छांव मिल जाए। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है
2: हाँ।
1: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना कई बार ऐसा होता है।
2: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है।
1: बिल्कुल मवेशी घुस जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
2: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी।
2: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं
1: सही
2: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का अंतराल के बाद आते हैं और फिर इस बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और

और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण, लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिएं। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं।
आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर

0: मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके, तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: तो नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन

0: रात भर अस्पताल में रुक सके, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है। भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
2: और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी CEO है, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया,
2: क्या बात,
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका

0: असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
1: पर जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
0: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने यह समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी,

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अब।
0: जी,
2: दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प से कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम।

किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प कह रहा है आ जा तू हमसे आंख ना।

0: दीपा याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहां ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में हमें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू

0: दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, तो मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे उसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
1: जी
0: खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगे तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं,
1: हाँ
0: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा हो
1: इसी
0: रहा है।
1: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए

कितने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया, क्या देखा था कितने।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलिया खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था।
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इधर जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया।
0: जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है।
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई गीत हम क्यों ना सुन ले।
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है, मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहां पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहां हुई, और इसके साथ साथ वहां पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब

प्यार की गलियां, बाहों की चलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मत तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

न आए और कब तक मुझे चढ़वाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, दीदी जाए जिंदगानी कब आएगी।

जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी से ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब।

0: लिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और

0: प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालवा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। वो नाटक उसमें से, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कू पै आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे हैं,
1: उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया,
0: बोले उसी रोल के लिए
1: नहीं, हाँ। हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: हाँ। विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन

0: स्टेशन के ऑफिस में मिली
1: और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
2: जी,
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
2: अरे वाह।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
2: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
2: जरूर सुनेंगे।

0: धारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना। आप किसी जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की। उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्थ सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्स अप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार।

0: तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई राम और शक्ति को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दो, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयाप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और मैं वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ। काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है, लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो वो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, जुनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी। जी,
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा

0: मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है। ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया।

0: हो गई जैसे
1: जी, जी.
0: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ, उसको काफी सराहा भी लोगों ने.
1: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
0: बहुत पुरानी फिल्म है
1: जी,
0: ये
1: जी. बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

देंगे दुख कब तक धर्म के ये चोर, अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर। कब्रों के रुकी है समय की नदियां, घबरा के यूं गिला मत कीजे। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आज चल ही न समाए तो क्या दे। बीत गए जैसे

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमलापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए, सुनिए युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी ये जो मौसम चल रहा है, इतनी लू, इतनी गर्मी और भयंकर तपन, इन सब में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सबसे ज़्यादा जल की। आप सभी जानते हैं, जल है तो कल है। जल पृथ्वी पर मानव जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। अतः जल का महत्व वायु के समान ही माना जा सकता है। इस परिभाषा में मनुष्य, जानवर और पौधे समान रूप से शामिल हैं। हर किसी का जीवन स्वच्छ पीने योग्य पानी पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप जल संरक्षण का जीवन बचाने पर हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए पानी से अधिक महत्वपूर्ण वायु है। पानी का उपयोग जल योजन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका अर्थ है कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारी चीज़ें इसी से संभव हो पाती हैं और यह हमारे रोज़मर्रा के काम है। इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके बिना अगर हम सोचें कि नहीं, हमारा चल जाएगा, एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, बाकी नहीं चल पाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पीने के लिए पानी, जो कि स्वच्छ जल आवश्यक है। पानी सिर्फ मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, ये पेड़ों और पौधों के लिए भी, निरंतर अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि और अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी इस मूल्यवान धातु पर निर्भर करते हैं। भूजल संसाधनों की कमी और अपर्याप्त वर्षा की जल के स्तर के कारण दुनिया के कई क्षेत्र अब पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण विश्व में विकराल समस्या बन चुकी है। इन कारणों से सूखे की स्थिति अपरिहार्य है और कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी पहले से ही एक वास्तविकता है। जनसंख्या की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग किया गया है और शहरीकरण और औद्योगिकरण ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है। वर्तमान में पृथ्वी पर पानी की गंभीर कमी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सबसे गंभीर मुद्दा है। अनुचित पाइपलाइन से बर्बाद होने वाला पानी इस समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्तमान जल संकट को कम करने के लिए लोगों को जल संरक्षण करना तत्काल आवश्यक है, क्योंकि जल संरक्षण की आपूर्ति मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका मूल्यह्रास होने के लिए भारी विनाशकारी घटनाओं का कारण बन सकता है। यह स्पष्ट है कि भविष्य में हमें पानी की कमी का सामना करना होगा। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए एक तत्काल कार्य योजना की आवश्यकता है, ताकि इस महत्वपूर्ण संसाधन को वर्तमान और भविष्य दोनों उपयोगों के लिए संरक्षित किया जा सके। जल भराव को रोकने और नाले के रिसाव की मरम्मत करके हम किसी भी तरीके से जल संरक्षण कर सकते हैं। जल के बिना हम विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यह शर्म की बात है कि लोगों ने इस ईश्वरीय उपहार को नजरअंदाज कर दिया है। यदि आप लोगों को जीवित रहना है, यदि हम सबको जीवित रहना है, तो जल संरक्षण करना ही होगा। जल है तो कल है, इस मंत्र को याद रख के आगे बढ़ना होगा। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, आप क्या चाहते हैं कि शुद्ध जल ना पिए? क्या उनके लिए हम कुछ बचा कर न जाएं? हमें पानी की जितनी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि दिनों दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है और वो बिना पानी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। पर हम न तो देखें तो पर्यावरण पर ध्यान दे पा रहे हैं। तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं और जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और दूसरा हम पानी को भी तो वेस्ट कर ही रहे हैं। तो यानी कि हम उनके लिए सब कुछ नष्ट करके जाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ भी देके नहीं जा रहे हैं। पृथ्वी पर जल

के जीवन के लिए अस्तित्व है। यदि हम जल संरक्षण को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारे बच्चे इस कमी का सामना करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस कमी का सामना करें। जीवन का आधार ही जल है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु वनस्पतियां जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है क्योंकि यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषि उद्योग स्वच्छता ऊर्जा उत्पादन में भी उपयोगी है। इसलिए जल का संरक्षण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में जल संकट एक गहरी समस्या बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण औद्योगिकरण और जल का अत्यधिक दुरुपयोग इस संकट के प्रमुख कारण हैं। लोग बिना सोचे समझे जल का व्यर्थ उपयोग करते हैं जैसे नल को खुला छोड़ देना अत्यधिक पानी से वाहन धोना या अनावश्यक रूप से पानी बहाना। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संचय न होना भी जल की कमी का कारण है। जल संरक्षण का अर्थ है जल का समझदारी से उपयोग करना, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। इसके लिए हमें कई उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए। छोटे छोटे कदम जैसे नल को बंद रखना, रिसाव ठीक करना, जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना बड़े बदलाव ला सकता है। वर्षा जल संचयन एक प्रभावी तरीका है जिससे हम बारिश के पानी को संग्रहित कर सकते हैं और उसे बाद में उपयोग ला सकते हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल संरक्षण बहुत जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम के जैसे आधुनिक तरीकों का उपयोग करके पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा पेड़ पौधे लगाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वर्षा को आकर्षित करते हैं और भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। समाज और सरकार दोनों को मिलकर जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। कॉलेजों स्कूलों सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पानी के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। अंत में आपसे मैं इतना कहना चाहूंगी कि जल है तो कल है। यदि हम आज जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से सतर्क होकर जल की हर एक बूंद का सही उपयोग करना चाहिए, इसे बचाने का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म आशिक बनाया आपने कई गाना हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे युवाओं के अपडेट रहने के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी का जो युग है वह चल नहीं रहा है, भाग रहा है, और इस सब में युवाओं को बहुत आगे का सोचना है, उन्हें बहुत आगे की तरक्की प्राप्त करनी है, तो इसके लिए उनको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। युवा किसी भी राष्ट्र का अभिन्न अंग है, ये हम सभी जानते हैं। एक राष्ट्र जो ऊर्जावान, जिज्ञासु और मेहनती युवकों से भरा है और उन्हें काम के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सक्षम हो, वह अपने विकास के लिए मजबूत आधार बनाता है। लगभग 65% भारतीय जनसंख्या युवाओं की है। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवा हैं जिन्होंने देश को गर्व की अनुभूति कराई है। भारत में युवा पीढ़ी उत्साहित और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी में, खेल में या किसी भी क्षेत्र में। हमारे देश के युवा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका अपडेट रहना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए ज्ञान

कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए, अपनी रुचियों का पता लगाने में सहायता करने के लिए युवाओं को सशक्त बनना ही होगा। भारत सरकार का भी लक्ष्य युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर है। निष्क्रिय होकर बैठने की बजाय युवाओं को देश के विकास और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। युवा दिमाग को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए देश की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं की सही दिशा में संभावित रूप से निर्देशित करना है, जो संयुक्त रूप से राष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए भी कई शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भारत सरकार लिंग भेदभाव नहीं करती है। देश में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए इरादे से सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। युवा मामलों पर विभाग युवाओं के सशक्तिकरण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। इनसे देश में युवाओं के नेतृत्व के गुण और अन्य कौशल को बढ़ाने के लिए कई पहलू हैं। जब देश के युवा अपने कौशल और क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे तो देश निश्चित रूप से विकास और उन्नति करेगा और इसे दुनिया भर में नई पहचान भी मिलेगी। एक राष्ट्र जो अपने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकार देता है, सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। भारत मजबूत और बुद्धिमान युवाओं के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। हालांकि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, परंतु हमें अपने देश के युवाओं पर गर्व है। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वह हमारे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए उन बुलंदियों तक लेके जाएंगे जहां पर हर कोई पहुंच नहीं सकता। हमारे युवाओं के पास इतनी मेहनत है, इतना उनके अंदर हौसला है कि वह चाहे तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी चीर सकता है। और यही हौसला और इसी उम्मीद के साथ हम अपने युवाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारा भारत हर क्षेत्र में तरक्की करेगा और उस ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जिसके बारे में बाकी के देश सोच भी नहीं सकते। तो भारत की युवा पीढ़ी अपडेट रह के हर चीज के मामले में अपने आप को कह सकते हैं कि नॉलेजेबल रख के वह आगे बढ़ेगी। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

साथियों, आप सुन रहे थे चुरा लिया है तुमने फिल्म का ये गाना दिल है मेरा, उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्तर पर इस बात की जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पादप स्वास्थ्य की रक्षा कैसे, भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। हमारा स्वास्थ्य और हमारी धरती का स्वास्थ्य दोनों ही पौधों पर निर्भर है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% और जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से प्राप्त होता है, फिर भी वे खतरे में हैं। हर साल लगभग 40% खाद्य फसलें पौधों के कीटों और रोगों के कारण नष्ट हो जाती हैं, जिससे कृषि को नुकसान पहुंचता है। बढ़ती वैश्विक भूख और बढ़ जाती है और ग्रामीण आजीविका खतरे में पड़ जाती है। पौधों के रोगों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $220 अरब से अधिक का नुकसान होता है और आक्रामक कीटों के कम से कम $70 अरब का नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां पारिस्थितिक तंत्रों को बदल रही है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही कीटों के पनपने के लिए नए अनुकूल पर्यावरण बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार, जिसकी मात्रा पिछले दशक में 3 गुना हो गई है, भी कीटों की बीमारियों को फैला रहा है। इन संकटों के मद्देनजर हमें लोगों और ग्रह दोनों के लिए पौधों की रक्षा करने की आवश्यकता है और हम सभी भी इसमें अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया।

है ताकि वैश्विक स्तर पर इस बात की जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पादप स्वास्थ्य की रक्षा कैसे, भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इस मान्यता को जब 2022 में से पूरा किया गया तब से यह शुरू हुआ है। पौधे स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पौध स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करने का एक अवसर होगा, न केवल अपने आप में बल्कि हमारे एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, जिसमें मानव, पशु, पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य शामिल है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने ग्रह द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले खाद्य संसाधनों को अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस आज के दिन मनाया जाता है यह बताने के लिए कि हमारे लिए पौधे कितने जरूरी हैं। हम जिस ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं यहाँ, और हम जो खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वह सभी पौधों की देन है। पादप जैव सुरक्षा के लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह है। फसलों को नुकसान पहुंचाने और उनके व्यापार को बाधित करने वाले खतरनाक कीटों और बीमारियों को रोकने के लिए उनकी जांच, सुरक्षा और प्रतिक्रिया करना हमारा उद्देश्य है। यह एक सुरक्षा कवच का काम करता है जिससे हमें भोजन मिलता है और किसानों को नौकरियां सुरक्षित होती है, और हमें इस पहलू को बहुत अच्छे से समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ताकि भूख कम हो सके, गरीबी दूर हो सके, जैव विविधता की रक्षा हो सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। यह दिन हमारे भोजन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका एक उद्देश्य है पौधों को कीट और बीमारियों से बचाना। हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की घोषणा की है, जिसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा बढ़ावा दिया गया है। यह दिवस 2020 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस वर्ष की विरासत है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको फिर से संगीत की दुनिया में।

साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में, PMVVY, जिसे भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। यह एक सरकारी पेंशन योजना है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को गारंटीकृत पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय परिदृश्य में एक अनूठा स्थान रखती है। बाजार आधारित निवेशों के विपरीत, जिनमें अंतर्निहित जोखिम होते हैं, PMVVY गारंटीकृत रिटर्न लचीली पेंशन भुगतान के माध्यम से स्थिर आय और मृत्यु लाभ के रूप में आश्रितों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए PMVVY एक निश्चित अवधि के बाद ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। यह व्यापक दृष्टिकोण जोखिम से बचने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा और उनके स्वर्णिम वर्षों में मानसिक शांति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और चिंता मुक्त सेवानिवृत्ति की ओर ले जाती है। यह योजना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, उन्हें मानसिक शांति प्रदान करने के लिए अनेक लाभ प्रदान करती है। यह भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक गारंटी शुदा पेंशन योजना की तरह है। PMVVY की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से इसका सुनिश्चित रिटर्न है। बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े निवेशों के विपरीत, PMVVY सरकार द्वारा समर्थित एक निश्चित रिटर्न दर की गारंटी देता है। PMVVY केवल एक मुश्त भुगतान से कहीं अधिक है। यह आपके निरंतर खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित आय प्रदान करता है। आपके पास अपनी पेंशन प्राप्त करने का तरीका चुनने की सुविधा है, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक। लेकिन PMVVY यहीं तक सीमित नहीं है। यह योजना मृत्यु लाभ भी प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है

कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके प्रियजनों को आर्थिक सहायता मिलती रहे। पीएम वीवीवाई मानता है कि जीवन अप्रत्याशित हो सकता है, अचानक वित्तीय जरूरतें उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए योजना 3 पॉलिसी वर्षों के बाद ऋण सुविधा प्रदान करता है। अंत में पीवीवाई आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने का तरीका चुनने की सुविधा देता है। इससे आप अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। पीएम वय वंदन योजना सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है। निवेश के समय आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी। यह गारंटीकृत आय आपके नियमित खर्चों को पूरा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती है। बाजार से जुड़े निवेशों के विपरीत, जिनमें रिटर्न के उतार चढ़ाव होता रहता है, पीएमवीवीवाई सरकार द्वारा समर्थित एक निश्चित रिटर्न दर प्रदान करता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि आपको पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशन के रूप में मिलने वाले सटीक राशि का पता होता है। यहाँ तक कि छोटी बचत योजनाएं भी इस तरीके का रिटर्न आश्वासन नहीं देती, क्योंकि उनमें हर 3 महीने में बदलाव होते रहते हैं। पीएमवीवीवाई आपको अपनी पेंशन प्राप्त करने के तरीके चुनने में लचीलापन प्रदान करता है। आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और योजना के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान का चयन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए गारंटीकृत मासिक आय के रूप में कार्य करेगा। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जीवन बीमा योजना है। पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी की खरीद राशि और उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त होता है। यह लाभ आपके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। 10 लाख की पॉलिसी अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर पॉलिसी धारक को ब्याज सहित खरीद मूल्य प्राप्त होता है। यह लाभ नियमित पेंशन आय के अतिरिक्त एक मुश्त राशि प्रदान करता है। पीएमवीवीवाई पॉलिसी के तहत न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के बाद समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने की अनुमति है। हालांकि सरेंडर अनुमति शुल्क की कटौती के बाद प्राप्त सरेंडर राशि खरीद मूल्य से कम होगी। इस योजना के तहत पॉलिसी के 3 साल पूरे होने पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है। आप अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद मूल्य पर 75% तक ऋण ले सकते हैं। जैसे जैसे आप सेवानिवृत्ति के करीब आते हैं, वित्तीय सुरक्षा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। यह योजना भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरती है, जो आपके जीवन के सुनहरे वर्षों में एक निश्चित आय और मानसिक शांति चाहते हैं। लेकिन क्या यह योजना आपके लिए उपयुक्त है? आइए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की पात्रता मापदंडों पर गौर फरमाते हैं। इसके लिए आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, नामांकन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, यह योजना अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते छोटा सा ब्रेक।

अन्य संयुक्त राष्ट्र सहयोगियों द्वारा आयोजित किया जाता है। आठवां, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 मई से 18 मई 2025 को आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के लिए सड़कें थीम के साथ सुरक्षित पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देना है। पैदल चलने वाले साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देकर 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने के लक्ष्य के लिए नीतियों को बढ़ाना है। आठवें सप्ताह का मुख्य फोकस सुरक्षित और टिकाऊ शहरी गतिशीलता के लिए मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ पर था। यह 2021 से 2030 के लिए सड़क सुरक्षा के दशक की वैश्विक कार्य योजना का हिस्सा है, जो मोटरयुक्त और गैर मोटरयुक्त वाहनों के लिए संतुलन बनाने पर जोर देता है। भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आमतौर पर जनवरी में आयोजित किया जाता है, जैसे कि 1 से 17 जनवरी, ठीक है, लगभग इसी में होता है, और यह साल में दो बार होता है, इसलिए अभी चल रहा है ये 12 मई से 18 मई। यह हर साल मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह के सड़कों पर, अगर जो ये चीज़ें घट रही है आजकल, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं सड़क दुर्घटना, ये सब कुछ, इन्हें कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। सड़क दुर्घटनाएं विश्व स्तर पर मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोग मारे जाते हैं, 50 करोड़ लोग घायल होते हैं। 5 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की मृत्यु का मुख्य कारण है सड़क दुर्घटना। विश्व स्तर पर प्रत्येक 4 में से 1 से अधिक मृत्यु पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की होती है। संयुक्त राष्ट्र का 8वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज, व्यवसायों और स्कूलों द्वारा किया जा सकने वाला ठोस और विशिष्ट उपायों पर प्रकाश डालना है। इन कार्यों में पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को बढ़ावा देना है, और जिससे कि परिवहन के लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक, पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभदायक साधन प्राप्त हो सके, जिससे सतत विकास लक्ष्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। हमें इस सड़क सुरक्षा सप्ताह की इस सप्ताह में पूरे हमें यह जोर देना होगा कि किस तरीके से हमें लोगों को इससे बचाना होगा। सड़क दुर्घटनाएं लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के तहत हमें इन सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखते लेते एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर।

श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि 11 बजे श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे रामचरितमानस का क्रमांक 63। स्वर है महेंद्र कपूर का।

शाम 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। शाम 7:00 किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। सात बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे उस्ताद विलायत हुसैन खां से ख्याल हेम कल्याण। रात्रि 8:00 और 9:15 का समय होगा फिल्मी गीतों का और कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम श्रोताओं को सुनाएंगे चंदन दास की गाई हुई गजलें रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में जैसलमेर में आकाशवाणी जैसलमेर द्वारा आयोजित लोक संगीत संध्या के संपादित अंश श्रोता सुनेंगे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे पद्मश्री तगाराम बील और अपानाथ पार्टी जोधपुर। वाचक स्वर एवं सहयोग संध्या व्यास और शांगिर सिंह का। अभी आप सुन रहे थे हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 1,00,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सबकी हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: रोगी निर्धन निर्बल थार आगे शीश झुकावे
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो थाने नित ध्यावे।

0: दुख हरो, दारिद्र हरो, ते कष्ट हरो बालाजी,
1: हरो कष्ट हरो बालाजी।
0: रोग शोक सब दूर करो, ते सुखी करो बालाजी,
1: ते सुखी करो बालाजी।
0: खाने भाग दादी।

0: पवन पुत्र है राम दूत थारे सारी दुनिया आवे
1: थारे सारी दुनिया आवे
0: थारा दर्शन करे चाव से महिमा।

यम हरी पार लगाया सरसी, लगाया सरसी, लगाया सरसी, हमें भगता की पीड़ मिटाया सरसी, हमें

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह

0: पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र बदले नहीं जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आज नई दिल्ली में एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कहां चूक हुई, इसका पता लगाने के लिए सीबीआई को जांच दी गई है।
1: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से।
0: एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा इस साल 20 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही 3,83,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 16 से 30 मई तक का समय दिया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना अनिवार्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल बताया है। आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की समेकित शिक्षा उपलब्ध कराने में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के एकीकृत विद्यालयों में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वर्तमान में प्रदेश के 27,889 स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही स्थान पर दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को कहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा के प्रावधानों को लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने टिप्पणी की कि जब राजस्थानी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है तो स्कूलों में इसकी शैक्षणिक स्वीकार्यता पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया कि राजस्थानी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और प्रारंभिक स्तर पर इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। नई दिल्ली स्थित एम्स और अन्य कई केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही कोटा और बूंदी के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये टीम इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों में संक्रमण के कारणों और सर्जरी की प्रक्रियाओं की गहन जांच करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में चिकित्सा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। श्री बिरला ने प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सख्त प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को भी कहा, जो सरकारी

0: अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था का सुधार रोड मैप तैयार करेगी। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर लिया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी और हरित ऊर्जा की ओर रुख करने का आग्रह किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालयों से शोध और नवाचारों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री बागड़े आज सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा के श्रेष्ठ मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने को कहा। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र, छात्र संघ कार्यालय और शोधार्थी बालक छात्रावासों का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत LED वैन के जरिए ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सलुम्बर जिले के ओड़ा और अदवास सहित कई गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां लोक कलाकारों ने गीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं को सरल भाषा में समझाया। बाड़मेर जिले में भी इस अभियान के प्रति आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रही हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक गीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आम जन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस बीच विभिन्न जनप्रतिनिधि इन शिविरों में शामिल होकर आम जन से रूबरू हो रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: जोधपुर आज अपना 568वां स्थापना दिवस पारंपरिक शौर्य और उल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर मारवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन करते हुए जोधपुर वासियों को बधाई दी। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इससे पहले मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और अब मौसम। प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल यहां दिन का पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में 45 डिग्री से ऊपर तापमान मापा गया। सबसे अधिक 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी जिलों में भीषण लू का दौर अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा।
2: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए ये रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले दो दिनों के दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां देखी जा सकती है।
0: इस बीच मौसम का एक और रंग आज देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में दोपहर बाद बारिश हुई, इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली। भरतपुर में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं धौलपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू सहित कुछ अन्य जिलों में अंधड़ तथा वर्षा के समाचार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए। प्रदेश में भी नर्स दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नर्सिंग स्टाफ की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई मामले की जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए नीति बनाने को कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत का घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हुआ और प्रदेश के सरहदी जिलों में प्रचंड गर्मी और लू की स्थिति बरकरार। बाड़मेर में दिन का पारा 48 डिग्री के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। बांसवाड़ा जिले में चंदन वन विकसित किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक शर्मा ने बताया कि राज्य के सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग की ओर से इसके लिए बजट प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और इसी मानसून सत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू हो जाएगा। जिले में ये वन घंटाला स्थित झातलिया खंड में लगाया जाएगा। ये वन 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंत्री संजय शर्मा ने बांसवाड़ा पहुंचकर घंटाला क्षेत्र की झातलिया साइट का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में सफेद चंदन के पौधे लगाने की योजना है। चंदन के पौधों के साथ ही दूसरे पौधे भी लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि चंदन अर्ध पराजीवी पौधा होता है। इसके अंकुरण के लिए दूसरे होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। होस्ट प्लांट के रूप में मूंग, अरहर, हेज, करंज और मेहंदी के पौधे काम में लिए जा सकते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत जिले में ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एलईडी वैन के माध्यम से रात्रि चौपाल में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जिले के सज्जनगढ़, पीपलखूट, मोरवानिया, टामटिया, नालचौकी और सागबारी सहित कई स्थानों पर रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को उम्बाड़ा गांव में मौके पर ही लाभ दिया गया। इससे पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। ग्राम रथ अभियान में कलाकारों के जत्थे प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि ये अभियान मिशन मोड पर संचालित हो रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जन जागरूकता लाई जा रही है। इससे बालिकाएं समूह में स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर HPV टीका लगवा रही हैं। तलवाड़ा के डॉक्टर अर्जुन ढिंडोर ने बताया कि अभियान में आशा सहयोगिनी और साथिन भी पात्र बालिकाओं और अभिभावकों की समझाइश कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले दिनों आबापुरा क्षेत्र के गामदा, झरनिया और चाचा कोटा सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने झरनिया गांव में लंबे समय से बंद पड़ी पनघट योजना को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए। वहां नया बोरिंग खुदवाकर पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने को भी कहा। इसी तरह गामदा गांव में भी पनघट योजना के तहत बंद पड़े जल स्रोत शुरू करने के निर्देश दिए गए।
3: जनगणना प्रक्रिया 2027 के तहत इन दिनों जिले में स्व

0: गणना की प्रक्रिया जारी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि ये प्रणाली नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देती है। इससे जनगणना को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 मई तक आम लोगों को स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके तहत जनगणना पोर्टल पर नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। इस काम के लिए जिले में 3,413 प्रगणक और 593 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। पृथ्वी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में साइकिल रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही शिक्षा, समानता और समाज सुधार के लिए किए गए उनके प्रेरणादायी कामों को याद किया गया। अंबेडकर जयंती के मौके पर भी जिले में कई कार्यक्रम रखे गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संविधान को जाने विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता हुई। साथ ही विभिन्न आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी कड़ी में ब्लॉक स्तर तक के कार्यालयों को भी शामिल किया गया। यहां श्रमदान कर कार्यालय परिसरों की साफ सफाई की गई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, पेपर लीक री शंका विचार, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, मामलारी जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूल आए राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो, पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बेधर 54,000 टन रोजीना फियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागोड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात, बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पेपर लीक पेमेंट री शंका माए नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दीनी है। एनटीए री ओरू सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बताई जियो के ओ फैसलो विद्यार्थियों रा भला और इम्तिहान माथे भरोसा न ध्यान रखता थका करी चियो है। एनटीए रे मुजब सरकार पेपर लीक रा आरोपान री जांच सारू मामलो सीबीआई ने सौंपण रो फैसलो कीनो है। एनटीए परीक्षा री नवी तिथि रो ऐलान वे कोई करेला। पंजीकरण विवरण उम्मीदवार री जानकारी और मई 2026 रा परीक्षा केंद्र माय बदलाव नी हुएला। एजेंसी रे मुजब परीक्षा ओजू देवन सारू पाछो नाम मनावण और फीस जमा करावण री जरूरत नी हुएला। एनटीए रा महानिदेशक अभिषेक सिंह खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के पूरो पेपर लीक नी भयो पर कुछ सवाल लीक हुआ। वह कहो कि परीक्षा री प्रक्रिया में चूक री ठाकरण सारू सीबीआई ने जांच दी जी है।
2: तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है, इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेंगे। स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से।
1: इन बीच एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इन साल 20 सितंबर न ओजुली चावेला। इनमें पहली भी परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला करीब 383,000 उम्मीदवार शामिल है सकेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग इंसारू अर्जियां माए जरूरी बदलाव बाबत 16-30 मई ताई री मियाद तय कीनी है। उम्मीदवार जरूरी भेवन री सूरत माए मोबाइल नंबर, ईमेल और पता री जानकारी बदल सकेला। नीति आयोग राजस्थान माय भणाई

0: ठहरा मौजूदा हालात री सराहना करता सका। एकीकृत शिक्षा रा हल्का माय राज्य ने देश माय अव्वल बतायो है। आयोग का न्यू जारी रिपोर्ट रे मुजब राज्य पहली बारहवीं कक्षा ताई री समेकित शिक्षा मुहैया करावन रा मामला माय देश भर माय अव्वल है। रिपोर्ट रे मुजब देश री कुल एकीकृत स्कूलना माय राजस्थान री हिस्सेदारी करीब 35% है। देश माय पहली बारहवीं कक्षा ताई री तालीम देवन वाली हर तीजी स्कूल राज्य माय चाल रही है। फिलहाल प्रदेश की 27,889 स्कूलना माय प्राइमरी उ सीनियर सेकेंडरी ताई री शिक्षा एक ही ठौर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने प्रदेश की सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूलना माय राजस्थानी ने एक विषय रा तौर शामिल करण रे बारा माय नीति बनावन रा हुक्म दीना है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहतारी पीठ कहो नवी शिक्षा नीति 2020 रातियत मायड बोली या भाषा आधारित भनाई लिखाई रा प्रावधान लागू करनो राज्य रो संवैधानिक दायित्व है। अदालत कहो कि जद राजस्थानी विश्वविद्यालय माय पढ़ाई जा रही है तो इनने स्कूला माय पढ़ावण ने स्वीकार करण मथ कोई सवाल ही नहीं होनो चाहिए। पीठ राजस्थानी ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा रा तौर मान्यता देवन रो हुक्म देता थका कहो इनने शुरुआती लेवल माथे भनाई लिखाई रा जरिया रा तौर अपनावन रे बारा माय विचार करियो जाउनो चाहिए। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और दूजा कुछ केंद्रीय चिकित्सा संस्थान रा जानकारा री टीम कोटा और बूंदी रा अस्पताल रो दौरो करेला। टीम आ अस्पताल माय ऑपरेशन थिएटर माय लाडला दिनाभ्यास संक्रमण रा कारण और ऑपरेशन री प्रक्रिया रे बारा माय जांच करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा माय चिकित्सा विभाग रा आला अहलकारा सागे मीटिंग माय आ जानकारी दीनी। श्री बिरला कोटा रा सरकारी अस्पताल माय लाडला दिना झपा वाली कुछ लुगाइया री मौत रा मामला ने घणो गंभीर बताता थका अहलकारा ने आइंदा एडा वाकया रोकण सारू करड़ा प्रोटोकॉल बनावन रा हुकम दीना। लोकसभा अध्यक्ष सरकारी अस्पताल रो दौरो कर व्यवस्था माय जरूरी सुधार रो रोड मैप तैयार करण सारू संभागीय आयुक्त री सदारत माय खास समिति बनावन बाबती कहो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। मध्य पूर्व माय चाल रही तनातनी बीच भारत देश माय रसोई गैस उत्पादन करीब 36,000 टन रोजिना रा लेवल नु बधार 54,000 टन करती नो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली माय सालाना व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 माय आ जानकारी दीनी। वह कहो कि कई देशों ने लाडला कुछ महीना माय कीमता माय बढ़ोतरी और ईंधन री कमी रो सामो करनो पड़ियो जबकि भारत घरेलू मूल माय थरता राखण माय कामयाब रह्यो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विश्वविद्यालयों शोध और नवाचार माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो है। वे आज सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय माय अहलकारन सागे मीटिंग माय बोल रहा है। ई मौके श्री बागड़े विश्वविद्यालय माय विकास रा न्यारा न्यारा काम जनता ने सौंपिया। वह विश्वविद्यालय परिसर माय करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्च मनाई जा स्वास्थ्य केंद्र छात्र संघ रा दफ्तर और शोध करण वाला विद्यार्थियों सारू बालक छात्रावास रो उद्घाटन कीनो। वह अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान श्री बागड़े नवी शिक्षा नीति ने असरदार तरीका लागू करण बाबत कहो। राज्य सरकार कानू जनता रा भला सारू चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी जनता ताई पूगावन सारू ग्राम रथ अभियान चलायो जा रियो है। इनाते सलूमर जिला रा ओडा और अदवास समेत कई गांव माय कार्यक्रम राखी जा जठे लोक कलाकार योजनावारी जानकारी गीता और नुक्कड़ नाटका रे जरिए आसान भाषा माय दीनी। बाड़मेर जिला माय ई अभियान सारू खास उमाव नजर आ रियो है। और ब्यूरो महाना खबर नवीसू
1: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित LED ग्राम रथों के साथ कला

0: जठार सिरथा बावसा गए याद करी चिया। ई मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मारवाड़ री ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने नमन करता थका जनता ने बधाई दीनी। ध्यान जोग है कि राव जोधा जी साल 1459 में जोधपुर बसायो हो। अरब मौसम प्रदेश में पाकिस्तान री सरहदों लागुड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी बीच लू बाज रही है। आज बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वह 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। जैसलमेर और बालोतरा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ऊंचो रहो। इन अलावा बीकानेर और जोधपुर में लू बाज रही है। कोटा बारां झालावाड़ चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में पड़ रहा जोरदार तावड़ाऊ जिंदगी माथे असर पड़ रो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि राज्य रा आतुणी हलका माए लू रो दौर आवता 3-4 दिन ताई चाल तो रहवन रा आसार है।
1: राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी 4-5 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विशेष रूप से पश्चिमी भागों में अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और वार्म नाइट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में अगले 2 दिनों दौरान कहीं कहीं शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बढ़ती जा सकती
0: है। इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हल्का माए आज भी बेखाऊ गर्मी थोड़ी सत्ता मिली। भरतपुर में दोपहर पाछे बरसात हुई। धौलपुर अलवर चूरू और झुंझुनू समेत कुछ जिला में अंधड़ सागर बिरखा रा समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई चियो। नुआ जमाना री मरहम पट्टी री शुरुआत करण वाला फ्लोरेंस नाइटिंगल री जयंती रा सिलसिला में वो दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखी जा जलसा में 15 नर्सिंग पेशेवरा ने साल 2026 सारू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल इनाम देर नवाजा। प्रदेश में आई नर्स दिवस के मौके कई कार्यक्रम रखी जिया। झुंझुनूरा बीडीके अस्पताल में चोखो काम करने वाला नर्सिंग कर्मचारियां रोमान करी जियो। इस मौके जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग नर्सिंग कर्मचारियां री निस्वार्थ सेवा री सराहना कीनी।
2: आज जो हमारे नर्सिंग कॉलेज है उसका भी बच्चियों ने बड़ी सुंदर रंगोली बनाई और इस अवसर पर जो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग ने मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है उसमें वो स्वेच्छा से रक्तदान भी करके समाज में जो समाज सेवा का रक्तदान का जो मैसेज है वो दे रहे हैं। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय हमारी जो बेटियां हैं और ज्यादा स्वस्थ बने सफल बने और इस अवसर पे नर्सिंग डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। पेपर लीक री शंका बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामला री जांच सीबीआई ने सौंपी जी। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार ने सगली स्कूल में राजस्थानी ने विषय रा तौर शामिल करण सारू नीति बनावन बाबत कहो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहो पश्चिम एशिया में चल रही तनातनी बीच भारत में घरेलू गैस रो उत्पादन बढ़ 54,000 टन रोजी नाफियो। और प्रदेश री आतुणी सरहदों लागुड़ा जिला में जबरदस्त गर्मी और लू रा हालात। बाड़मेर में पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार किनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
4: कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी ने सभी श्रोताओं लालजी भाई का गणा गणा राम राम। देखो श्रोताओं, आज है मंगलवार और हर मंगलवार ना अपन आकाशवाणी में कोई भी विशेषज्ञ ने बुलाऊ, देखो कि अपन अपनी जो कोई भी किसान भाई समस्या है या किसान भाई का कोई सवाल जवाब है उस बारे में अपन जानकारी दी। तो आज मंगलवार है और आज अपन स्टूडियो में पधारे है सुगंधन जी मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक काजरी। तो सबसे पहले तो और अपने आकाशवाणी में रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद सर।
5: तो देखो डॉक्टर साहब के आज आकाश में बता रहे हो तो आपको किसान भाई थे बढ़िया जानकारी दे सो। तो सबसे पहले सवाल था ही है कि भाई अपनों जो को भी बुआई है, बुआई से पहले जो को आगामी मौसम में आप खेत कोकर तैयार करवाएं और उनमें अपनों की अड़ी चीज़ हैं जो कर विशेष ध्यान सो किसान भाई ध्यान देना पड़े।
6: जी सबसे पहले तो हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी रबी सीजन की कटाई हो चुकी है और आगामी सीजन है जो हमारा खरीफ सीजन है जो शुरू होने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि उनको एक तो क्या है, स्वस्थ और उन्नत किस्म का बीज का चुनाव करना है। दूसरा क्या है कि उनको फसल चक्र अपनाना है। इसका मतलब है अपने खेत को दो भागों में विभाजित कर लें। अगर उस क्षेत्र में आपने पहले अदलहनी फसल बोई है तो इस मौसम में आप कोशिश करिए कि आप दलहनी फसल का चुनाव करिए, या अगर अदलहनी फसल बोई है तो दलहनी का करिए और अदलहनी बोई है तो दलहनी का करिए। दूसरा क्या है कि यहाँ की मिट्टी में समस्या रहती है, एक तो दीमक की काफ़ी समस्या रहती है, दूसरा है जो जड़ जनित बीमारियाँ हैं जैसे जड़ गलन हो गई, उकठा रोग हो गया, इनकी भी समस्या काफ़ी रहती है। तो किसान भाई इनको कम से कम रखने के लिए गर्मी की जुताई अवश्य करें। जब भी तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए तो एक गर्मी की जुताई अवश्य करना चाहिए। किसान भाई करते हैं लेकिन कभी या तो वो बहुत पहले कर देते हैं या जब तापमान कम होता है तब कर देते हैं या फिर जुलाई में अंतिम समय पर करते हैं, उस समय बारिश की वजह से तापमान कम हो जाता है। तो जो जितना फायदा मिलना चाहिए कीट और बीमारियों को ख़त्म करने का उतना उनको फायदा नहीं मिल पाता है।
5: बिल्कुल सही बात है कि अभी अपन को गहरी जुताई करके जो भी जमीन के अंदर कीट पतंगे हैं या जो भी जमीन के अंदर ऐसे जीव है जो अपन की फसल को उत्पादन में व्यवधान पैदा करते हैं तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और जो को अपने जमीन में उर्वरक हुई और आप संतुलित उपयोग क्यों कर रहे हो?
6: जी संतुलित उर्वरक उपयोग का मतलब है कि फसल की जरूरत के अनुसार और उस स्थान विशेष की जो उर्वरता होती है मिट्टी की उसके अनुसार उचित अनुपात में उचित समय पर सही तरीके से उर्वरक है जो फसल को उपलब्ध करवाना। और इसके लिए किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि वो 75% के लगभग तो रासायनिक खाद है उससे दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 25-30% है जिसमें जैविक खाद का समावेश जरूर होना चाहिए।
5: बिल्कुल सही बात है। आप अपन देख रहे होंगे भी किसान भाई है जो को जैविक प्रयोग कम कर गए और रासायनिक प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज़ों अपर जो जमीन में थे की प्रभाव पड़े?
6: जी जमीन में 2-3 प्रकार से इसके प्रभाव पड़ते हैं। एक तो क्या है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती है,

0: उसका एक कारण है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि मिट्टी की अम्लता है वो भी बढ़ जाती है, मतलब तापमान है जो जो मिट्टी का सोइल पीएच है
1: सोइल पीएच
0: तो वो कम हो जाता है। तो मिट्टी में अम्लता बढ़ने से जिस अनुपात में पोषक तत्व मिलना चाहिए पौधों को, वो जमीन में उपलब्ध होते हुए भी उनको
1: नहीं मिल पा रहा
0: अवशोषण
1: है।
0: नहीं हो पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है कि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक जो जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा कम हो
1: कम
0: जाती
1: होती
0: है।
1: है।
0: तो उसके कारण क्या है कि एक तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और फलस्वरूप उसमें वायु संचारण भी कम होता है, और मिट्टी है जो बहुत कठोर हो जाती है।
1: बिल्कुल सही बात है कि भाई अब देखो कि भाई प्रयोग आप रासायनिक पर कर भी रहे हो, तो रासायनिक और जो पोषक प्रयोग कर रहे हो उन्होंने कोई विकल्प है जो आप खेती बाड़ी में किसान भाई उन्हों को उपयोग कर सके।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2-3 दिन पहले हम पूरे हमारे देश से अपील की है कि जो तनाव चल रहा है पश्चिमी एशिया में, उसका प्रभाव प्रत्येक नागरिक के जीवन पर पड़ रहा है, प्रत्येक नागरिक उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। उसी प्रकार से हमारी खेती भी कहीं ना कहीं उस युद्ध से जुड़ी हुई
1: जुड़ी हुई
0: है,
1: है।
0: तो वो इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि जितने भी उर्वरक हमारे कृषि में लगते हैं, हमारे देश में तो उत्पादन होता ही है, साथ ही साथ कुछ उर्वरक है जो हम बाहर से भी आयात
1: आयात कर रहे
0: करते
1: हैं।
0: हैं, उसके साथ ही साथ हमें हमारे देश में निर्मित करने के लिए जिस गैस की जरूरत पड़ती है वो भी बाहर से अन्य देशों से आयात की जाती है। तो उसकी आपूर्ति प्रभावित होने से अभी विशेषकर रासायनिक उर्वरकों का संकट हमारे सामने खड़ा है। दूसरा क्या है कि अगर हम अनावश्यक अत्यधिक मात्रा में उर्वरक प्रयोग करते हैं तो उसके भी काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसके लिए कोशिश करनी है हमारे किसान भाइयों को कि वो जो वैकल्पिक स्रोत है जिनसे फसल को उनके मुख्य पोषक तत्व मिल सकते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, तो उसके लिए उनको एक तो हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है कि गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए, और फसल चक्र अपनाना चाहिए, और दूसरे जो भी हमारे जैव उर्वरक है उनका प्रयोग करना चाहिए।
1: तो ये आप जो खेत में आप बनाओ जो खाद बनाए गोबर गैस, तो उन बनाने वास्ते अपन की साधनों की आवश्यकता उसे।
0: जी, गोबर गैस, जो गोबर है, जो गोबर की खाद है, उसको बनाने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से पशु होने चाहिए, जो हमारे पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी किसान भाइयों के पास लगभग उपलब्ध होते हैं। दूसरा क्या है कि जो भी हमारे खेत से या पशुओं के खाने के बाद जो भी चारा होता है, उसके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। करने के लिए हमें उसका सही तरीका अपनाना है। उसके लिए किसान भाइयों को करना चाहिए कि पहले एक गड्ढा खुदाई करें, और जो भी गोबर की खाद उनके निकल रही है,
1: निकल रही
0: गोबर
1: है,
0: निकल रहा
1: निकल
0: है,
1: रहा है।
0: उसको उसमें डालते जाइए। उसके साथ ही जो भी चारे का या फसल का अवशेष निकलता है वो भी उस गड्ढे में डालते जाइए, और ऊपर से हर 15 दिन 1 महीने के अंतराल पर उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा चाहे तो वो खाद भी उसमें डाल सकते हैं, रासायनिक खाद, यूरिया वगैरह, जिससे उसका क्या है कि जो अपघटन है, जो उसकी सड़ने की प्रक्रिया है
1: प्रक्रिया है।
0: वो तेज हो जाएगी, और उसमें जो उपलब्ध जो भी नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, पोषक तत्व होंगे उनकी मात्रा ज्यादा मिलेगी।
1: मिलेगी तो आप जो गोबर गैस बनाओ इरा कोई खेती में कोई दुष्परिणाम भी जा अविक नहीं हम,
0: जी, गोबर के तो जो गोबर की सड़ी गली खाद,
1: क्योंकि
0: अगर
1: किसान भाई
0: अच्छी
1: ना
0: सड़ी
1: किसान
0: गली,
1: भाई को लगे कि भी ये सो आसपास जो पौधा भी जाओ उपजाव कर जावे,
0: जी, इसके दुष्प्रभाव
1: खरपतवार ज्यादा
0: तो
1: पैदा हो जावे।
0: दुष्प्रभाव अगर कच्ची सड़ी, अगर गोबर की खाद अच्छे तरीके से नहीं सड़ाई गई है तो उसमें दुष्प्रभाव इस प्रकार से होते हैं कि जब पशु चारा चरते हैं या खरपतवार

0: वो खाते
1: खाते
0: हैं,
1: हैं।
0: तो उसके जो बीज है तो उसके गोबर के साथ में आ
1: आ
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं।
0: तो वो अगर अच्छी तरह सड़ी नहीं होगी और उसको आप खेत में प्रयोग करेंगे तो जो खरपतवार है उनकी संख्या ज्यादा होगी। दूसरा क्या है कि अगर गोबर की खाद अच्छी सड़ी नहीं होती है तो इसमें क्या है कि जो सेलुलोज होता है
1: हाँ
0: उसकी मात्रा ज्यादा रहती है, और जो हमारे यहाँ की जमीन में उदई की समस्या काफी है, दीमक की समस्या
1: अच्छा
0: काफी है, तो जो सेलुलोज होता है वो इसका प्रिय भोजन होता है, तो उस प्रकार से उसको दीमक की समस्या भी उसमें थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो इस प्रकार से प्रयोग करना
1: तो आप
0: चाहिए।
1: भी देख रहे हो कि यहाँ पर किसान भाई है जो जैविक प्रयोग कम कर रहा है और रासायनिक प्रयोग ज्यादा कर रहा है, तो वो कारण की है।
0: जी किसान भाइयों का एक तो क्या है कि उनको रासायनिक जो भी उर्वरक है उनका ज्यादा उपयोग करने का एक तो उनकी सोच है कि ज्यादा खाद देंगे तो ज्यादा ही फायदा
1: फायदा
0: मिलेगा,
1: मिलेगा।
0: लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जितना आप खाद देंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी और पैदावार भी साथ ही साथ कम होगी। कोई भी चीज चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसकी अगर अधिकता से जरूरत के हिसाब से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो अच्छी होते हुए भी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है। वास्ते वो देखा था ना कि अभी गंगा पंजाब से एक ट्रेन चलती थी
0: जी
1: जो बीकानेर वास्ते वहाँ पर कैंसर ट्रेन बनता था, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग हो रहा था, तो पूरा दुष्परिणाम वजह से हो गया कि भाई लोगों ने कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई, और वो जैसो पंजाब से बीकानेर वास्ते एक ट्रेन चलती थी वो नाम तो कैंसर ट्रेन। तो आप तो
0: जी
1: किसान भाई कह सकते जित हो सके जित रासायनिक का प्रयोग कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक और प्रयोग करें, ये कैसे किसान भाइयों कम लागत रम हो और अच्छा उत्पादन मिल सके, और वो जो फसल है वो भी हमारी बाजार में रासायनिक की तुलना में ज़्यादा दाम में बिक सके। चलो आप और अगले एक नेक्स्ट सवाल सवाल है कि पोषक तत्व मिट्टी की उर्वरता अपन को बढ़ाओ दीजिए, मिट्टी पानी जाँच है वो कौकर करूँ और वो अपो मिट्टी री अपो जो उत्पादन क्षमता है वो कौकर बढ़ाऊँ।
0: जी जैसे मैंने पहले भी बताया कि उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, जो उर्वरता उसकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए किसान भाइयों को एक संतुलित उर्वरक उपयोग का संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपलब्ध करवाने चाहिए। हमारे किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो यूरिया यूरिया का ही ज़्यादा प्रयोग
1: प्रयोग
0: करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: और अन्य उर्वरक है, अन्य पोषक तत्व है जैसे फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, उनको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम महत्व देते हैं, और ये अपेक्षाकृत थोड़े महंगे भी होते हैं, तो किसान भाई इनका प्रयोग भी कम करते हैं, और यूरिया का इस्तेमाल करने से फसल एकदम हरी हो जाती है, उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, इस वजह से भी किसान भाई यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक उपयोग करना चाहिए, उसके साथ ही साथ सल्फर और जिंक का प्रयोग भी हमारे खेत में करना बहुत जरूरी है, विशेषकर से जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, और इस क्षेत्र में तो राइडा और हमारा जीरा तो
1: जीरा।
0: काफी प्रमुख है, तो इनके लिए तो विशेषकर से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, जिसके तेल की क्वालिटी भी अच्छी होती है और बीज की चमक भी बढ़ती है।
1: किसान भाइयों ने मिट्टी पानी की जांच वास्ते कौकर जांच करानी चाहिए, होना वो थोड़ी सी वो तकनीकी बताओ।
0: जी मिट्टी मिट्टी और पानी की जांच करने के लिए हमारे जैसलमेर में कृषि विभाग है, रामगढ़ रोड में, वहाँ पर हमारे किसान भाई उनके मिट्टी और पानी की जांच करवा सकते हैं, उसमें नाम मात्र का शुल्क लगता है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो मिट्टी का सैंपल लेके आए हमारे किसान भाई तो वो एक उचित तरीके से सैंपल लिया जाना चाहिए, ऐसा न करे कि एक ही जगह से सैंपल उठा ले
1: सैंपल
0: और या फिर कहीं घास फूस हो, फसल खड़ी हो, वहीं से सैंपल लेके आ जाए, और जो सैंपल है, नमूना है, जब भी ले तो खेत के चारों कोनों से, बीच से, पांच जगह से उनको सैंपल लेना चाहिए, उसके पश्चात उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए, और मिक्स करने के पश्चात उसको ऐसे क्रॉस क्रॉस का
1: क्रॉस
0: निशान
1: करके
0: बना दे नीचे फिर

0: मिलाकर और आमने सामने की मिट्टी को रख ले। फिर वापस उसको एक बार से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जब वो पूरी तरह से मिश्रित हो जाए, वापस क्रॉस बना करके उसको आमने सामने की मिट्टी का नमूना ले लेना चाहिए। और जब खेत में जब नमूने के लिए वो गड्ढा करें तो उसको बिल्कुल वी शेप में उसका शेप होना चाहिए कि ऊपर से चौड़ाई हो और जो दोनों साइड के जो उसके साइड है, बगल है, वो नीचे जाके और बिल्कुल वी की तरह नीचे जाके मिल जानी चाहिए। और जो जो मिट्टी वो वहाँ से संग्रह करेंगे, कलेक्शन करेंगे, उसके लिए साइड साइड से, बगल बगल से खुरच खुरच करके वो लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसका नमूना ले, कलेक्ट कर ले।
1: और उससे मतलब मालूम पड़ जाएगा कि अभी जब अपन की मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: अपन को वही अपन को जमीन में उसका छिड़काव करना पड़ेगा।
0: जी वो उसमें साथ में वो नमूने के साथ में जैसे कहाँ उनका खेत है, किसान का नाम, कसरा नंबर, पहले पूर्व में ली गई फसल, आगामी जो लेने वाले हैं उस फसल का भी उसमें टैग लगा करके और हमारे कृषि विभाग में उनको जमा करवा देना
1: और
0: चाहिए।
1: एक आप फसल चक्र चले, तो फसल चक्र की प्रक्रिया है कि किसान भाई ने फसल चक्र की कम अपनाना चाहिए।
0: जी फसल चक्र का मतलब है कि जैसे अगर उन्होंने अभी खरीफ मौसम में दलहनी फसल ली है तो रबी में उस क्षेत्र में दलहनी फसल लगाए, अगर अभी अनाज वाली ली है तो फिर दलहनी लगाए। इस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए, उस क्षेत्र फील्ड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई फसल है जैसे हमारे जीरा हो गया या कोई अन्य फसल हो गई जिसकी जड़ें काफी ऊपर रहती हो, अगर ऐसी फसल है जिसका जड़ें उथली हो, तो कोशिश करनी चाहिए अगली फसल का चुनाव उस खेत में ऐसी का करना चाहिए जिसकी जड़ें गहराई तक जाती हो,
1: जाती है
0: ताकि जो भी उपलब्ध पोषक तत्व जमीन में पड़े हो तो वो विभिन्न गहराई से उनकी जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाए।
1: अपन का अगला सवाल है कि भाई सभी जो वो जैव उर्वरक है तो सभी फसलों में उपयोग अपन कर सको है।
0: जी जैव उर्वरक है, कुछ कुछ जैव उर्वरक है जिनका सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, कुछ है जो फसल विशेष के लिए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो ये जो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें होती है इनकी जड़ों में गांठें बनती है, उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसी से ये राइजोबियम जो कल्चर है इसको बनाया गया है। तो वो क्या है कि दलहनी फसलों के लिए ही उपयुक्त है, उन्हीं में प्रयोग कर सकते हैं राइजोबियम कल्चर को। उसके साथ में जैसे अजोटोबैक्टर हो गया, इसको हम जितने भी अनाज की फसलें हैं उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। दूसरा एक पीएसबी करके आता है, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया करके, इसको आप सभी फसलों में, चाहे कोई भी फसल बुआई करने जा रहे हैं, उस सभी फसलों के लिए इसको काम में ले सकते हैं। ये क्या काम करता है कि जो डीएपी हम देते हैं, जो फास्फोरस हम देते हैं, वो सारा का सारा पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो जमीन में जैसा का जैसा ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि ये मोबाइल नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकता है, जड़ों को इसके पास आना पड़ता है। तो वो जो मात्रा जमीन में फिक्स हो जाती है तो उसको घुलनशील करने का ये पीएसबी कल्चर है जो काम करता है, इसको सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं।
1: और अपन ये भी देखो ही नहीं कि अभी किसान भाइयों ने जो हमें अगली फसल की तैयारी करनी है तो वो ना बीज चाहिए,
0: जी
1: तो बीज वो कई विभाग से लेवे, सहकार समिति से लेवे या अपना पुराना बीज उपयोग करे बीजों वास्ते, और बीज लेवे तो वास्ते की होना सावधानी रखनी चाहिए।
0: जी बीज लेते वक्त हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई है जो हमने देखा है, कहीं हम मीटिंग में, प्रशिक्षण में, इनमें जाते हैं तो किसान भाई कई समय पुराना, कई सालों पुराना बीज अभी भी उपलब्ध, अभी भी काम ले रहे हैं और अपना बीज नहीं बदलते हैं। अगर संकर किस्म नहीं है तो एक बार किसान ने बीज खरीद लिया तो उसको 3 से 4 साल तक वो प्रयोग कर सकते हैं, और उसके लिए किसान भाइयों को संपर्क करना चाहिए। जितने हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे संपर्क करें, कहाँ से किस फसल का, किस किस्म का बीज उनको चाहिए, कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास

0: किसान भाइयों को करना पड़ेगा। अगर वहाँ से उपलब्ध नहीं होता है तो हमारे यहाँ जो स्थानीय बाजार है वहाँ से भी वो अच्छे जो ट्रेडर्स हैं उनके पास से खरीद सकते हैं। और बीज खरीदते वक्त बस उनको ध्यान रखने की जरूरत है, बीज नंबर उसकी कहीं एक्सपायरी तो नहीं है, पुराना माल तो नहीं है, जिस बैग में से अगर दिया जा रहा है वो सील्ड है या फिर वो कहीं आउटडेटेड नहीं है, और उसका बिल जरूर हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए ताकि कल को कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए फिर जो भी कार्रवाई है वो उसको हमारे किसान भाई कर
1: कर
0: सके।
1: सके, बिल्कुल सही बात है। कभी किसान भाई को जब भी बाजार से कोई सामान ले, बीज बीज ले, तो उनको खुद की सतर्कता बहुत ज़रूरी है कि भाई एक्सपायरी डेट देख लें, बीज अच्छा लें और उपचारित बीज ले लें। क्योंकि अपन देखते हैं कि कुछ किसान भाई है जो लेट बोए चालू करते हैं, तो उनके लिए उनको कौन सा बीज लेना चाहिए?
0: फसलों में क्या है, कुछ किस्में हैं जो जल्दी बुआई के लिए होती है और कुछ किस्में हैं जो पछेती बुआई के लिए होती है। तो उसी प्रकार से किसान का जब खेत तैयार हो उसी के अनुसार उसको करना चाहिए। फिर भी हर फसल के अंकुरण के लिए एक निश्चित समय होता है, तापमान होता
1: तापमान होता
0: है,
1: है।
0: तो उसको हमारे किसान भाई को समय पर ही बुआई करनी चाहिए। अगर जैसे समय के पश्चात वो बुआई करेंगे तो उनकी फसल तो हो जाएगी पर उसमें पैदावार उसी अनुपात में कम होती
1: कम होती है,
0: जाएगी।
1: बिल्कुल सही है। अब एक और सवाल है कि ज्यादा खाद देने से कीट पतंगों और बीमारियों में बढ़ोतरी क्यों होती है?
0: जी, जो खाद है, खाद में अलग अलग प्रकार के खाद है। जैसे अगर यूरिया खाद का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो पौधा है, फसल है, उसकी बढ़वार अधिक होती है। अधिक होती है उसमें क्या है कि हरापन बढ़ता है, दूसरा उसमें मुलायमता बढ़ती है, सुकुलेंसी बढ़ती है। तो अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका प्रयोग उसमें उनका आक्रमण ज़्यादा होगा, उस हरेपन को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। हमारे किसान भाइयों को नाइट्रोजन उपयोग के साथ ही उनको फॉस्फोरस और पोटाश का प्रयोग जरूर करना
1: करना
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: क्योंकि पोटाश है जो पौधों में इम्यूनिटी बढ़ाता है और एक मजबूत पौधा किसी भी कीट और बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करता है।
1: बिल्कुल सही। और अपन का अंतिम सवाल चल रहा है कि भाई रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो इसीलिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए? जो अपन ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उपयोग कर रहे हैं उससे मतलब क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं?
0: जी, जो भी रासायनिक हम प्रयोग कर रहे हैं उसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि एक तो मिट्टी का जो पीएच लेवल है
1: डाउन हो जाता
0: उसमें डाउन डाउन होता है, अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है तो जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता पौधों की को कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा कम हो जाती है, अब मिट्टी की जलधारण क्षमता कम हो जाएगी और उसके साथ ही उसमें कठोरपन ज़्यादा हो जाएगा और वायु का संचारण नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप जितने भी सूक्ष्म जीव है, जो जैसे दलहनी फसलें हो गई उनकी जड़ों में जो जीवाणु होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हवा नहीं मिल पाएगी, तो वो जो उनकी सूक्ष्म जीवों की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी फसल की उत्पादकता में दिखाई देगा। उसके साथ ही साथ ये रसायन है जो कई प्रकार के रसायनों से मिलकर बने होते हैं और इसका ज़्यादा उपयोग करने से ये बहकर पानी के साथ जाएंगे और जल प्रदूषण करेंगे। उसका प्रभाव जो भी मनुष्य है उसके जीवन पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। आप देखो, आप भी देख रहे हो नहीं कि जब आप रासायनिक का प्रयोग कर रहे हो तो उर वास्ते अपन एक तो सबसे पहले कि अपन बाजार से वो जहर खरीद लाना पड़े, और उरे बाद जब उर छिड़काव करें तो जो उरा नियम कहा जाए कि भाई अपन शरीर पूरा ढक के रखना है, चेहरे में चश्मा लगाए रखना है, सर में टोपी रखनी है, अपन शरीर बिल्कुल भी खुल्लो नहीं रहना चाहिए, और जिके साइड हवा चल रही है जिके साइड अपन उरु प्रयोग करना है। जब आप ये चीज़ देख रहे हो कि भाई जब आप रासायनिक कर रहे हो, जब आप क्यों चीज बातों ध्यान रखना पड़े, जब उर छिड़काव आप अपनी फसलों में

राइट, तो जब फसलों मत करने बाद भी उर्वरक की दुष्परिणाम हो सके ये आप खुद देख सको, क्योंकि जब आप अपना शरीर वास्ते तो ध्यान रखो तो जो वही फसलों आप छिड़काव करें और वो जो उस पैदा हो जो को फसल हो रही है वो फसल आप ग्रहण करें तो आप कई प्रकार का रोग हो सके। तो आप तो किसान भाई यही कह सो कि जितो हो सके जितो जैविक रूप प्रयोग करें और अच्छी फसल उत्पादन करें और खेतरी खाद खेत में तैयार करें और उरे साथ कम लागत रहे थोड़ी फसल तैयार हो जाए और उर परिणाम हो सके कि भी थोड़ा लाभांश बढ़ जा से और लाभांश के साथ साथ अगर थे एक साइड में रासायनिक से उत्पादित फसल रखो और एक साइड में थे जैविक से उत्पादित फसल रखो तो निश्चित रूप से जो थो जैविक से फसल उत्पादित करियो वो न थोड़ा मूल्य ज़्यादा मिल से और थोड़ा वो लाभ भी ज़्यादा मिल से। तो आप वही कह सको कि किसान भाई ना कि जितो हो सके जितो जैविक प्रयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमावे। तो अपने आज स्टूडियो में आया सुगंजन जी मीणा आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और ये साथ ही आज रहे किसानवाणी कार्यक्रम से लालजी भाई दोषी कवर कर जाए राम राम।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान।

से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एम आर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।
1: बिन पूछे ये काम किया,

तुम्हें अपनी महबूबा से मिलने।

जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर। सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का।

जिंदगानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, दोनों की रानी कब आएगी तू।

प्यार की गलियां, बाहों की चलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी।

श्रोताओं, आराधना फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं कूटल खां।

ಐರುತ್ ಶಿರೋಮಣರಿ ಶಿರೋಮಣರಿ ಹಮ್ ಕಿ ಪೀರ ಮೇ ಭಾಯೋ ಭೂಲಿ ಭೋಜಾಯೋ ಭೂಲಿ.

बोला मुझे अमराने राम, बोला मुझे अमराने राम, गुरजा मारी हाले।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 गौरवमयी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 मई 2026 को जैसलमेर केंद्र की ओर से आयोजित लोक संगीत संध्या के संपादित अंश। संयोजक एवं प्रस्तुतकर्ता श्री रामजी लाल मीणा, सहयोग श्यामवीर सिंह, तकनीकी सहयोग वीरेंद्र चौहान और संजय भार्गव। नमस्कार। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज आकाशवाणी जैसलमेर द्वारा लोक संगीत की इस सांस्कृतिक संध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक पद्मश्री तगाराम जी भील। आपने 200 से अधिक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और राजस्थान की इस लोक कला को ख्यातनाम किया है। साथ ही हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपानाथ पार्टी। आपने बीन वादन में राजस्थान की इस लोक कला को देश विदेशों तक पहुंचाया है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन से और इसके लिए आमंत्रित करते हैं हमारे केंद्र प्रभारी रमेश चंद्र जी जोनवाल और कार्यक्रम प्रमुख श्री रामजी लाल जी मीणा। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरती पापानी, सांध्य दीप नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ ही अब शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस लोक संस्कृति और इस लोक संस्कृति, इस माटी के रक्षक, हमारी इन परंपराओं को जिनमें महाराणा प्रताप का शौर्य है और मीरा के सांवरे की भक्ति है, जिसने हमेशा ही, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे जन्म जन्म के साथी। तो मीरा ने बहुत गहरी बात कही है कि मेरे जन्म मरण के साथी मेरे सांवरिया मेरे साथ है। कितनी गहरी बात है कि जन्म से मरण तक के साथी है। तो वो परंपरा आज भी निर्वासित और चलती आ रही है। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे कार्यक्रम प्रमुख, तो एक निवेदन रहेगा मेरा हमारे रामजी लाल जी मीणा जी कार्यक्रम प्रमुख जी से, आप मंच पर पधारें और स्वागत शब्द प्रस्तुत करें।
1: नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सभी आगंतुक अतिथि, जिसमें मैं देख रहा हूँ कुछ संगीत से जुड़े भी लोग भी हैं, कुछ साहित्य से जुड़े लोग हैं और कुछ मीडिया से जुड़े लोग भी हैं, तो सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे इस अच्छे कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए आप लोग आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी एक ऐसा संस्थान है जिसने बहुत लंबे समय से देश के विकास में हर क्षेत्र में सहयोग दिया है। जैसे दुग्ध क्रांति रही और हरित क्रांति रही, और देश के विकास में जिन जिन भारत सरकार की योजनाओं का योगदान है उन सबका प्रचार प्रसार करता रहा है आकाशवाणी, और आगे भी करता रहेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है विकसित भारत की तो कल्पना करते हैं, उसमें भी भारत का योगदान, विकास में योगदान आकाशवाणी

0: छोड़ का राह आगे भी रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार योजना तो बनाती है लेकिन अगर जनता तक ना पहुंचे तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और आज हम देखते हैं प्राइवेट मीडिया तो कई तरह की चीज़ें न्यूज वगैरह देता रहता है, पर हमारा आकाशवाणी आज भी सरकारी योजनाओं का पूरे तन और मन से प्रयास करता है जनता तक पहुंचे और आखिरी तक पहुंचे व्यक्ति को भी इसकी जानकारी मिले। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं या उनको किसी तरह की कोई सब्सिडी मिल रही है तो उनके विशेषज्ञों को हम समय समय पर बुलाते रहते हैं आकाशवाणी और जानकारी देते रहते हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं, कुछ फोन इन भी होते हैं। और इसी तरह स्वास्थ्य के संबंधी अगर हम बात करें तो हमारे आकाशवाणी जैसलमेर से भी स्वास्थ्य संबंधी हर वीक कार्यक्रम जा रहा है जिसमें हम डॉक्टर्स को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उनको बुलाते हैं। और महिलाओं के प्रोग्राम भी हमारे यहाँ से हो रहे हैं। जिस तरह से देखिए कि हर बड़े बड़े केंद्र हैं जैसे प्राइमरी चैनल है उनमें सब जगह महिलाओं संबंधी, बच्चों संबंधी, युवाओं संबंधी अलग अलग तरह के विभिन्न विधाओं में कार्यक्रम पहले से चलते आ रहे हैं, उनमें हम नए नए प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा पहले आकाशवाणी की जो प्रसारण की जो स्थितियाँ थी, पहले शॉर्ट वेव पर चलती थी, फिर मीडियम वेव पर आई और आजकल एक नया FM मोड चल रहा है और इसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा सुधार आया है। आप लोग देखते होंगे कि पहले आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती थी, एकदम क्लियर आती है आवाज़, जहाँ तक भी पहुँचता है मीडियम वेव का प्रसारण तो वहाँ प्रसारण की आवाज़ अच्छी आती है, FM में और अच्छी आती है। और पहले प्रसारण तो खाली रेडियो से आप सुन पाते थे, आकाशवाणी की जो भी प्रोग्राम होते थे चाहे विविध भारती से सुने, चाहे जैसलमेर केंद्र से सुने या किसी भी केंद्र से सुने, सारे प्रसारणों को आप सुनते थे ओनली रेडियो के माध्यम से। अब FM मोड पे आने से ये अच्छा रहा कि आप लोग मोबाइल से भी सुन सकते हो, जो गाड़ियों में FM लगता है 4-व्हीलर में उससे भी आप सुन सकते हो। तो ये उत्तरोत्तर आकाशवाणी ने भी समय के हिसाब से बदलाव किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आकाशवाणी की श्रोताओं की संख्या बड़ी है, घटी नहीं है। आज के इस भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास बहुत मुश्किल से समय निकल पाता है तो जो TV चैनल्स होते हैं उनके प्रोग्राम देख पाना तो इतना आसान मुझे लगता नहीं है, लेकिन आकाशवाणी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो या गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो तो भी म्यूजिक सुनना हर आदमी पसंद करता है। और म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम, ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम, सभी तरह के कार्यक्रमों का समावेश आकाशवाणी के कार्यक्रमों में होता है। और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गरिमापूर्ण होती है जिसमें कि बहुत सारा ध्यान रखा जाता है। और अगर आप कहें कि जिस तरह से देश की सीमाओं के आसपास जो भी हमारे आकाशवाणी केंद्र हैं उनका अधिक महत्व है तो सरकार भी इन पर विशेष ध्यान देती है और इनकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देती है और इनके प्रसारण पे भी स्टाफ भी अच्छा लगा हुआ है, बढ़िया काम चल रहा है सर हमारे हिसाब से। और अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर थोड़े समय पहले हुआ था तो जो भी जानकारियाँ आती है फिल्टर होकर के वही जानकारी आकाशवाणी सरकारी माध्यम से दी जाती है। प्राइवेट चैनल्स ने आपने देखा होगा कई तरह के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर कई तरह के चैनल्स हैं सोशल मीडिया के चलते हैं, कुछ तो भी न्यूज़ दे रहे थे परंतु आकाशवाणी से वही न्यूज आ रही थी जो फैक्ट है। तो इसी तरह से आकाशवाणी आज भी इसके लिए किसी के बराबरी करने की आवश्यकता नहीं, आकाशवाणी बराबरी कोई भी और मीडिया नहीं कर सकता जितनी सच्चाई आकाशवाणी दिखाता है। प्राइवेट चैनल से भी कई बार सर्वे करवाते हैं तो फैक्ट न्यूज़ के बारे में आकाशवाणी आज भी अव्वल आता है, सच्चाई जो सच्ची न्यूज़ देता है, कभी भी उसको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राइवेट मीडिया कुछ भी छाप देते बाद में क्षमा मांगते, फिर कई लोग नहीं भी मांगते हैं, परंतु इनकी एक जवाबदेही है जो सरकारी मीडिया से अगर कोई न्यूज़ जाती है तो सरकार की तरफ से भाई अधिकृत ही होगी ऐसा मानते हैं। कई चैनलों पे न्यूज़ सुनते हैं देखते हैं फिर वो सोचते हैं कि दूरदर्शन या आकाशवाणी से कहीं कुछ कंफर्म हो जाए कि वाकई ये न्यूज़ सही है, चाहे किसी भी तरह की हो, कर्मचारियों के हित की हो या सरकारी योजनाओं के संबंधित हो या देश की किसी भी तरह की कोई समाचार हो। तो आज की इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, मेरा बस इतना सा है कि आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आभार और आप लोग आनंद लीजिए। बड़े अच्छे कलाकारों को आज हमने आमंत्रित किया है जो पद्मश्री से सम्मानित है, हमारे तगाराम जी भी ये हैं और एक पार्टी हमने जोधपुर से बुलाई है आपानाथ पार्टी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह प्रोग्राम प्रस्तुत करके काफी नाम कमाया है।
1: कम शब्दों में हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो रीति है, जो रिवाज है, सब कुछ सर ने बयान कर दिया। पोड़ा कीजे काट का, पिंड कीजे पाषाण, प्रस्तर कीजे लोह का, तब देखो जैसाण। हमारा जैसाण देखना आसान बात नहीं है और आसान नहीं है यहाँ के हर एक कूचे कूचे गली गली में बिखरे हुए संगीत को समेटना और उस संगीत को अपनी रूह तक पहुँचाना, यही काम करते हैं। आज के हमारे ख्यातनाम कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री श्री तगाराम जी भील। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम आपका। आपने कई सारी विदेश यात्राएं की हैं, 4 महीने का अमेरिका में यात्रा प्रवास भी रहा है आपका, कि हमारी माटी की सुगंध विदेशों तक पहुंच

कुछ सितारे आसमान में बनते नहीं हैं, लेकिन अपनी चमक से आसमान और धरती दोनों को अचंभित करते हैं। ऐसे ही सितारे आज हमारे साथ हैं तगाराम जी। तो अब तगाराम जी से निवेदन रहेगा चिरमी के लिए।

तितली कोयल मोरनी हिरनी बत्तख मीन सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोभा सीन। चिरमी सुनने के बाद आमंत्रण दे रही हूँ हमारे जोधपुर से आए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आपानाथ एंड पार्टी के लिए। तो सबसे पहले प्रस्तुत है आपानाथ जी के द्वारा केसरिया बन्ना।

और अगली प्रस्तुति आपकी है बाजे रे गूजरी। इसमें दुल्हन के जब हम लेकर आते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब दूल्हा दुल्हन को लेकर घर आता है तो गृह प्रवेश के पहले घर के द्वार पर जो नृत्य और गायन होता है ये उसका वर्णन है।

और अब हम आमंत्रण देते हैं तगाराम जी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पद्मश्री तगाराम जी भील। हमारी संस्कृति में है सुंदरता, किसी काम को कैसे किया जाता है, ये हमारी माटी में हमारे संस्कारों में है। और इन्हीं में से एक कार्य महिलाओं का होता है, जिसमें हमारे यहाँ की जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं वे एक साथ मिल बैठकर परिवार की महिलाएं ऊंट के लिए गोरबंद गूंथती हैं। उस गोरबंद गूंथने में इतनी भावों का समावेश करती हैं, अपने अपने ऊंट के गोरबंद को इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना भावों से भरती हैं कि उस समय उन्हें ये लगता है कि हम अपने प्रियतम को सजा रहे हैं। और किसका देखते हैं गोरबंद कितना सुंदर होता है, कितना निखर कर आता है, कितना उसका सौंदर्य उभर कर आता है, उसी गोरबंद की सुंदरता अभिव्यक्त कर रहे हैं तगाराम जी।

एक और प्रस्तुति हमारे लिए तगाराम जी की ओर से, उड़े बैरी चिड़कली बैठे रे पपैया, उड़े बैरी चिड़कली।

और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आवाज दे रही हैं अपानाथ पार्टी जो हमारे साथ ओसियां जोधपुर से पधारे हैं और आपके साथ हैं समला दीदी, कंचन, सुश्री नीला और आसू देवी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या रसभरी प्रस्तुति दी है आपने। आपानाथ जी पार्टी और पद्मश्री तगाराम जी भील जैसलमेर ने आज की शाम सुरमई और यूं कहें कि हम सभी श्रोताओं के लिए यादगार बना दी, हमारी स्मृतियों में एक और यादगार स्मृति जुड़वा दी है। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के अंतर्गत आकाशवाणी जैसलमेर द्वारा आयोजित इस लोक संगीत संध्या में आप सभी पधारे, आप सभी का आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र की ओर से आयोजित लोक संगीत संध्या के संपादित अंश। संयोजक एवं प्रस्तुतकर्ता श्री रामजी लाल जी मीणा, सहयोग श्री श्यामवीर सिंह, तकनीकी सहयोग वीरेंद्र चौहान और संजय भार्गव।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में यानी रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों